आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में फिल्म दिल देखे देखो, उसी मशहूर फिल्म से ये सुंदर सुंदर गीत आप सुन रहे हैं। मन में विश्वास और संदेह एक साथ नहीं रह सकते।

हो साथिया हो बेलिया सुना दी आपको लता जी और मोहम्मद रफ़ी जी ने। जब आपकी आवाज़ किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। जब आपकी आवाज़ किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको जोड़ते जोड़ते इंसान खुद टूट जाता है। किसी की नज़र ना लगे आपको, किसी की नज़र ना लगे, लगे तो बस लंबी उम्र की दुआ।

सफ़र छोटा ही सही, सफ़र सफ़र छोटा ही सही, मगर यादगार होना चाहिए। और रंग काला ही सही, मगर वफादार होना चाहिए।

फिल्म ब्रह्मचारी रफी जी की आवाज में एक अच्छा इंसान बने, लेकिन इसे साबित करने के लिए अपना समय बर्बाद ना करें। एक अच्छा इंसान ज़रूर बने, पर इसे साबित करने के लिए अपना समय मत बर्बाद करना।

आशा भोसले की आवाज में फिल्म का नाम कारवां। हे ईश्वर, जो कुछ आपने दिया है, हे ईश्वर जो कुछ आपने दिया है, जो कुछ आपने नहीं दिया और जो कुछ देकर ले लिया है, उस हर बात के लिए आपका धन्यवाद। जो कुछ आपने दिया है वह आपकी कृपा, जो कुछ आपने नहीं दिया उसमें हमारी भलाई, देकर और जो कुछ ले लिया है।

जी करता है बस सुनते ही रहे कि जब से तुम्हें देखा है आँखों में तुम ही तुम हो। रफ़ी और आशा भोसले जी ने सुना दी फिल्म का नाम घराना, और इस फिल्म में जो अपना किरदार निभाया है राजेंद्र कुमार जी और आशा पारेख। कभी कभी खुद की बड़ी याद आती है, कभी कभी खुद की अपने आप की बड़ी याद आती है कि क्या से क्या हो गए देखते देखते। जीवन में कभी ऐसा मोड़ आता है कि हम वाकई में रुक जाते हैं, थम जाते हैं, सोचते रहते हैं कि हम क्या थे और कहाँ आ गए। कभी कभी खुद की बड़ी याद आती है कि क्या से क्या हो गए देखते देखते। समय वक्त हमारे हाथ में नहीं है, देखते देखते हम बचपन से कब दीनार हो जाते हैं वो भी हमारे हाथ में नहीं है, और दीनार होने के लिए भी बड़ा सौभाग्य होता है। हर किसी को ये नसीब भी नहीं होता है, तो आप एक नसीब वाला है। सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, जीवन हंसते में खुशियाँ में बिताते रहे। हर एक पल का जरूर से

0: रहे हो?
1: टीवी बंद करने, कुछ बातें करते हैं।
0: बैठो ना, कितना अच्छा गाना है। मैं भी ये गाना याद कर लेता हूँ। अगर तुम कहीं गई ना तो मैं भी

बेवफा जा, हमने तेरा वादा देखा, आपको सुना दी है ये सुंदर सुंदर सा गीत महेंद्र कपूर। और उससे पहले था हम जब सिमट के आपके करीब आ गए, फिल्म वक्त से पहला गीत जो आपने सुने वो फिल्म वक्त से, और दूसरा था जो महेंद्र कपूर के आवाज़ में यहाँ से हमने श्रवण की है। के लिए मैंने ये सुंदर सा गीत चुन कर रखी हूँ, ज़रूर से आप सुने।

0: शमा, ये खुशी काफ़ी दिनों के बाद आपके लिए आपकी काफा और हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से लाया गया है। और हम आपको बता दें, फिल्म का नाम है घर घर की बात। नेखनते नेखन फैफ तक के ये सुंदर सा फिल्म पिक्चराइज किया गया है और मुकेश और लता जी ने हमको यहाँ से जी हाँ सुना दी है, हमने सुन ली है ना?
1: दिल के करीब।
2: छोड़िए मेरा हाथ, छोड़िए ना। जानते हैं आप, आपकी इस हरकत पे मैं आपको कानून के हवाले कर सकती हूँ।
1: भगवान करे वो दिन जल्दी आ जाए जब कानून हमेशा के लिए हमें एक दूसरे के हवाले कर दे।
0: बहुत प्यार के साथ आपके लिए पेश किया जाता है, दिल थाम के सुने।

सांसे दिल छेड़ दे, ये सुंदर सा गीत हमको सुना दी है, हम फिर से एक बार देख ले। जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी जी और लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफ़ी जी, फिल्म का नाम पासपोर्ट 1961 में ये सुंदर सा फिल्म भी पिक्चराइज किया गया है।

आपने सुने श्री महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में, और ये दूसरा भाग आशा भोसले जी की आवाज़ में। ऐसा है कि दो व्यक्ति ये गीत गाए हैं, और इसका मतलब है पहला जो था प्रश्न था, और ये दूसरा जो आशा भोसले जी ने गाई है ये पहला गीत का उत्तर है। यानी कि फ्राग एंड आंतवर्थ होता है। फिल्म का नाम जिंदगी और मौत निगदी फैफन सस्ता के पिक्चराइज किया हुआ फिल्म है। Van het leven heb ik geleerd, voor elke zonsondergang is een nieuw begin. Jab sham ko surya ast hota hai, to iska matlab hai savera zarur hoga. Voor elke deur die dicht gaat, gaat er één open. Kahawat hai agar koi एक दरवाजा बंद करता है तो ऊपर वाला आपके लिए जरूर से कई अन्य दरवाजा भी खोल देता है। For Alec lived the end, begin a new. For elk einde is er een nieuw begin. जैसे कि एक रास्ता जहाँ से ख़त्म होता है वहीं से दूसरा रास्ता शुरू हो जाता है। जिंदगी चलने का नाम है। एलक फॉर ट्रैक इज एर अन अनकोम्स। फॉर एलक फॉर ट्रैक इज एर अन अनकोम्स। जैसे कि एक छोटी सी उदाहरण, हम घर से निकले तो हम यहाँ आ गए, और यहाँ से निकलेंगे तो फिर घर वापस चले जाएंगे। फॉर एलक नीदरलाख इज एर रेफरेंस। रेफरेंस मतलब कि तरह पाकन वराक नहीं, पर आप व्राक ना लेना। वो खुद ही पाएगा जो जैसा करेगा।

Niets is voltooid zolang er leven is. Niets is voltooid zolang er leven is. जब तक ये प्रकृति है चढ़ाव उतराव लगे रहेगा। तो इसे आप घबराना नहीं। और मुझे पता है कि आप घबराओगे भी नहीं क्योंकि इवेंट खून इन स्टेरक इन दिफिड्यू। आत्मनिर्भर आप में है, शक्ति है प्रभु के आप में।

सुन रहे फाव हिंदुस्तानी रेडियो जिस पर आप और मैं चुन हूँ। आपको ढेर सारा प्यार मिले आपका फाव हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से।

दिल के सहारे आजा, ज़रूर से प्यार करे, क्योंकि दिल से प्यार होता है। और आपको सुना दे है देखे तो आशा भोसले जी और पहला और आशा भोसले जी और महेंद्र कपूर जी, फिल्म वक्त से निकाला गया, ये दोनों बेहतरीन गीत आपके लिए। और यहाँ से आपको हम बहुत से बधाइयाँ पेश करती हूँ पावन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से।

गजल सुना दी हमको जगजीत सिंह जी ने, वो कागज की कश्ती पपीर बोट।

als je toch drinkt, drink in ieder geval niet meer dan 1 glas alcohol per dag. Hou 2 alcoholvrije dagen per week om gewenning te voorkomen. जैसे हम सूरीनाम में देखते थे तो बुज़ुर्ग लोग तो था जो खेत में काम करते थे, शाम के वक्त में खाना के बाद तो वो एक पैक ज़रूर लेते थे। और मेरे ख्याल से वो एक दवा के रूप में था। दवा के रूप में वो सब लेते थे दिन भर के थकान उतारने के लिए। और वो भी उन दिनों में काफी तंदुरुस्त थे क्योंकि काम करते थे, समय से अपना पैक लगाते थे, खाते पीते अच्छे से थे। हेल फेल लेखांस बख वेकिंग वारदर तुन। Op zo'n manier heb je dan ook minder kans op

मित्रों, मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। और ये मन ही है मित्रों, ये मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकता हुआ रहता है। अगर जीवन का सफल बनाना है मित्रों, तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन पर काबू करना बहुत जरूरी है दोस्तों, ये मत भूलिए।

मित्रों, मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। मित्रों, इस पर विश्वास कीजिए। और गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया है, वही मन में पैदा होने वाली विकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है, बड़ी दूर रहता है। मित्रों, साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है, बिल्कुल आसानी से प्राप्त कर लेता है। दोस्तों,

0: मित्रों, अगर मन को वश में नहीं करोगे तो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा वो। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग, मित्रों, जबकि बुद्धिमान लोग विश्व कल्याण के लिए कार्य करते हैं। अब पता नहीं है कि आप बुद्धिमान हो या कैसे हो, मगर हम यही आशा रखते हैं कि आप बुद्धिमान हो। मित्रों, जो हम आपसे बातें बतलाते हैं, आप इसे हल्का में ना लीजिए, हवा में नहीं लीजिए, जीवन में उतारने की कोशिश करना, तभी आपके बाकी जीवन जो है, तभी उसका और आनंद उठा पाओगे। अन्यथा वही घिसते रह जाएंगे हम। भले ही धन दौलत सब कुछ है, मगर पूछिए अपने आप से कि आपके अंदर में वो खुशी है, हौसला है, कि कुछ खामियां महसूस कर रहे हो आप, कि कुछ कमती है अभी, तो यही है कमती। ज्ञान के सागर में से जितना पानी ले पाओ, जितना ज्ञान ले पाओ, लीजिए, वो सब आपके काम में आएंगे। मित्रों, इसमें कोई संदेह नहीं है।
1: भाई बहनों, स्वयं का बचाव करने के लिए कभी दूसरों को कसूरवार मत ठहराओ, क्योंकि स्वयं के पास सत्य को प्रकट करने का अपना ही तरीका है।

दोस्तों, यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना ये संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। बहादुरी से भरा हुआ है मित्रों, कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है। ध्यान करना हम क्या बतला रही है, सरोजनी की बात है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं मित्रों, तभी वे हमला कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से बहुत बच के रहना चाहिए दोस्तों। क्या

दोस्तों, झूठ कितना भी बलवान क्यों ना हो, वो सत्य को नहीं दबा सकता। फिर से बोल रहा हूं, आप इसे हमेशा याद रखना। झूठ कितना भी बलवान क्यों ना हो, वो सत्य को नहीं दबा सकता, नहीं दबा सकता। अपने विचार को पवित्र बनाओ मित्रों, क्योंकि व्यक्ति अपने विचार से ही अनंत काल तक जीवित रहता है, अनंत काल तक जीवित रहता है मित्रों।

साथियों, इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। हाँ, इतना मजबूत बनो, स्ट्रांग हो जाओ मित्रों। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना कि जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाए और न्याय न मिले तो युद्ध करो। वास्तव में मुसीबत साथ देने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। आपको है एक ऐसा मित्र, एक दोस्त कि सब खब्बू है, आए खाए पिए मस्ती में रहते हैं और प्रॉब्लम भाई तो भागे हैं जैसे हरना। नहीं, ऐसे इस तरह का दोस्त आपको नहीं है, हम मजाक कर रहे हैं मित्र। आपका मित्र तो बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे अच्छे लोग हैं, ये तो पता है मुझे। और ध्यान रखना इसको भी दोस्तों। प्रार्थना ऐसे करें जैसे कि सब कुछ भगवान पर निर्भर है, और काम ऐसे करें जैसे कि सब कुछ आप पर निर्भर है। खुद को प्रभावित करने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करें और दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपने दिल का उपयोग करें।

महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विधिनम कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा।

विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पारब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणं नमः विद्या प्रदायकं दीक्षं मंत्रं गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम। फाउन रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करता हूं और ये कहना चाहूंगा कि मैं हूं आपका सेवक संजय और आपके साथ इस समय जुड़ गए हैं।

जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना किया जाता है कि उनके स्वास्थ्य में परिवर्तन आए। जिनके घर पे नया बच्चा आए है तो उन्हें हार्दिक से स्वागत और बहुत सा बधाई आप परिवार को दिया जाता है। जिनके आज जन्मदिन है उनके भी बहुत बहुत बधाई दिया जाता है।

सभी जो अपने नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें अमृतक वरकदाख तुखवंश। जो अपने स्कूल के तैयारी में लगे हुए हैं तो उन्हें भी शुभकामनाएं प्रस्तुत करते हुए और ये कहना चाहूंगा हर बार की तरह कि माँ सरस्वती को बोलना नहीं, बुद्धि और ज्ञान के बांटने वाले माँ सरस्वती को जरूर नमन कर लेना।

देश में सफर से आए हैं तो उनको ये कहना चाहूंगा कि वेलकम इन नीदरलैंड। Een land vol met plekken waar je kan bezichtigen. Kunst en cultuur. Met mooie markten. Bruggen in Nederland. Mooie gebouwen langs Amsterdam en over het hele land. Maar jo Amsterdam mein kaha jata hai, unko dekhne ke liye log kitne deshon se aate hain. Langs de snelweg. इसी तरह से और भी सुंदर सुंदर घरों जो हमारे देश में बनाया गया है, जिनके आर्किटेक्ट ऐसा ऐसा काम करके रखे हैं, उनके देखने के लिए बहुत से देशों से लोग आते हैं। कुछ सुंदर सा घर जो नौ तौरब में भी बनाया गया है, जिनको देखने के लिए लोग अनेकों देशों से आते हैं। Architect van Nederland. इसी प्रकार से हर एक शहरों में कुछ न कुछ है जो आप देख सकेंगे। और जो सफर पे जाने वाले हैं, उनके लिए ये कहूंगा कि समय पे उपस्थित हो जाना, ताकि आपको कोई तकलीफ ना पहुंचे। सुनने वालों, हम पहला भजन की ओर बढ़ेंगे।

निखिल वर्मा की आवाज में ये सुंदर सा भजन हम सब सुने। सुनने वालों कहते हैं कि मंजिले मुझे छोड़ गई, रास्ते ने पाल लिया है, जा जिंदगी तेरे जरूरत नहीं, मुझे ठाकुर ने संभाल लिया है। हम अगला भजन की ओर बढ़ेंगे।

दो ही मकसद है मेरे जीवन के, तुझे पाना या तेरा हो जाना। ये सुंदर सा भजन हम सुने सिंपाल खारल की आवाज में। हम अगला भजन की ओर बढ़ेंगे।

इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथ में है। आप सभी को एक सुप्रभात कहते हुए हम अगला भजन की ओर बढ़ेंगे। राधा नाम की माला गजेंद्र प्रताप सिंह और निखार जूनियर ने गाए हैं।

कहते हैं कि जिंदगी में ऐसा कुछ करो कि काम दोनों का चलता रहे, अध्ययन भी चलता रहे और दिया भी जलता रहे। सुना लो, हम अगला भजन की ओर बढ़ेंगे।

गाय ने केला देखकर और मुंह मोड़ लिया। सुनने वालों, एक महिला ने गाय के सामने जाकर फिर उसके मुंह में केला देना चाहा, लेकिन गाय ने केला नहीं खाया। पर महिला केला खिलाने के लिए पीछे ही पड़ गए थे। जब महिला नहीं मानी तो गाय सींग मारने के हो गए। महिला डरकर बिना केला खिलाए चले गए। महिला के जाने के बाद पास खड़े एक सांड, जिसे हम बैल से जानते हैं, और पूछा, वे इतने प्यार से केला खिला रहे थे, आपने केला क्यों नहीं खाया और उसे डराकर भगा भी दिया? गाय बोली, प्यार नहीं मजबूरी है, आज एकादशी है, महिला मुझे केला खिलाकर पुण्य कमाना चाहते हैं, वैसे ये मुझे कभी नहीं पूछती, गलती से उसके मकान के आगे चले जाती हूँ तो डंडा लेकर मारने को दौड़ती है, प्रेम से सुखी रोटी भी मिल जाए तो अमृत तुल्य है, जो केवल अपना भला चाहते हैं वे दुर्योधन हैं, जो अपनों को भला चाहते हो वो युधिष्ठिर है, जो सबका भला चाहते हो वो कृष्ण कहलाते हैं।

की प्रार्थना सदा कुछ मांगने के लिए नहीं, अपितु ईश्वर ने जो कुछ दिया है उसके प्राप्ति आभार व्यक्त करने के लिए होनी चाहिए। लिव लाइस्ट्रस एन खुए मोरखतु खवेंस। और जो हमारे देश में सफर करने को आए तो उनसे ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे दनहा शहर में जो मार्ग कहलाते हैं द ग्रोटेस्क मार्ग फॉर यूरोपा, 450 मीटर लंग, और जहां से दुनिया के हर एक प्रांतों से लोग वहां भी अपना सामान लेने को आते हैं, सुनो ना हम अगला भजन की ओर बढ़ेंगे।

कहते हैं कि जिसके साथ बात करने से ही खुशियाँ दुगनी और दुख आधा हो जाए, वही अपना कहलाते हैं।

किसी ने अच्छा कहा है कि नया रोशनी नया दिन एक शुभ दिन आपको प्रस्तुत है। हैव अ ब्यूटीफुल डे। जो इस समय अपने कार में ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें शुभ यात्रा कहा जाता है।

0: एक फिल्म जो बनाया गया 1973 में, जंजीर 1973 में बनाया गया, जिसमें अमिताभ बच्चन ने और अपना काम किए ना बबली जी।
1: हाँ जी, आपको पता है कि इससे पहले जब ये फिल्म बननी थी तो सब एक्टरों से पूछा, धर्मेंद्र, जितेंद्र, राजेश खन्ना, राजकुमार, सब ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि इस फिल्म में एक भी गाना नहीं था जो एक्टर ने गाया,
0: यानी कि हीरो के लिए कुछ नहीं था,
1: हीरो के लिए गाना नहीं था, इसलिए सबने मना कर दिया।
0: तो इसलिए सबने मना कर दिया ये फिल्म को, और तभी अमिताभ बच्चन को और प्राप्त हुआ ये फिल्म करने को।
1: तो अमिताभ बच्चन को फिल्म मिली और फिल्म इतनी हिट बॉक्स ऑफिस में हिट हुई कि अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन नाम दिया गया।
0: उस समय पे एंग्री यंग मैन कहा गया अमिताभ बच्चन को।
1: हाँ जी।
0: सुनो वालों, हम एक और सलीम जावट का लिखा हुआ फिल्म जो हम सभी जरूर देखे होंगे, फिल्म का नाम शोले है, और उस फिल्म से एक गीत को और आपके लिए रखने के तैयार हूँ।

0: आप भी कुछ कहने वाले थे अभी कुछ पुरानी फिल्म के अंतर्गत।
1: हाँ जी जरूर, मैं बताने वाली थी एक दो जोड़ी बहुत मशहूर हुई थी 70-75 में। एक हुई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की जोड़ी और एक थी सलीम जावेद जी की जोड़ी।
0: सलीम जावेद जी की जोड़ी, क्योंकि ये 2024 में सब दोबारा फिर एक दूसरे को मिलाया गया ना।
1: हाँ जी,
0: और ख़ास करके फिल्मी के अंतर्गत जिन्होंने बहुत सा बड़े बड़े फिल्मों मिल करके लिखे थे।
1: हाँ जी, इनकी फिल्में बहुत हिट हुई। ये फिल्मों में लेखक थे, राइटर थे, स्टोरी लिखते थे और इन्होंने शोले, जंजीर जैसी फिल्में बनाई।
0: ऐसे बड़े बड़े फिल्मों में और अपना यानी कि बनाए। हम फिल्म शोले का एक गीत की ओर बढ़ेंगे, सुनो लो।

फिल्म शोले से निकाला हुआ ये इंस्ट्रूमेंटल, और अब एक गीत की ओर बढ़ेंगे।

0: सुनने वालों, एक फिल्म जो 1975 में बनाया गया, बबली जी ये किस दिन रिलीज किया गया था ये फिल्म जो 1975 में, और ये डायरेक्टर कौन थे इस फिल्म का?
1: 1975 में जो फिल्म बनी उसका नाम था शोले, और 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई। 15 अगस्त यानी भारत का स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, और इसके डायरेक्टर थे रमेश सिप्पी।
0: भारत में तो दुनिया पे सबसे ज़्यादा फिल्म जो कहा जाता है कि बॉम्बे में बनाया जाता है, एक साल में कुछ 600 फिल्में कहा जा गया कि बनाया गया, तो ये देखा जाए तो एक दिन में 2 फिल्म भी और बन सकते हैं, पर ये बड़े बड़े फिल्म, आप ऐ सही कितने प्रकार के फिल्म होते हैं ना।
1: हाँ जी,
0: जो बड़े बड़े फिल्में होते हैं तो उसके लिए डेट निकाला जाता है, और हर साल ऐसे 15 अगस्त को भी बड़े बड़े फिल्म जो और प्रीमियर में जाते हैं। तो 1975 में ये एक बड़ा फिल्म था, रमेश सिप्पी जी ने बनाए थे ना।
1: हाँ जी।
0: कलाकार उनमें?
1: कलाकार थे संजीव कुमार जी, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, और एक नया विलन आया अमजद खान।
0: उस समय के लिए एक नया विलन आया था अमजद खान।
1: हाँ जी, और जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं रमेश सिप्पी जी, उनको लोगों ने बोला कि आप नया विलन क्यों ले रहे हो, क्योंकि ये फिल्म कहीं पिट ना जाए, आपको एक अच्छा मजबूत और विलन लेना चाहिए।
0: तो उस समय के बात है कि जब अजीत आदि जो विलन,
1: अजीत, प्रेम चोपड़ा, प्रेमनाथ,
0: ये लोग जो विलन का रोल करने लगे थे, पर अमजद खान के लिए ये एक नया रोल था जो जिसमें उसका नाम भी रखा गया था गब्बर सिंह ना।
1: हाँ जी, और जो इस फिल्म के लेखक हैं, अरे सलीम जावेद जी, दोनों जोड़ी हैं जिनकी, वो कहते हैं कि हमने जब उनके गांव में, उन्होंने एक कहानी सुन रखी थी गब्बर सिंह, और सच्ची कहानी है, तो इसी के ऊपर उन्होंने गब्बर सिंह, अरे सुझाव दिया डायरेक्टर जी को कि विलन का नाम गब्बर सिंह ही रखना चाहिए।

0: और इस फिल्म को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, फिल्म फेयर अवार्ड, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर।
1: उस समय के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था और अमिताभ बच्चन जी उस समय सुपरस्टार बन गया था ना इसी फिल्म से, यानी कि सुपरस्टार का और जो जगह प्राप्त किए थे ना।
0: हाँ जी, लेकिन इनसे पहले उनकी फिल्म आई थी जंजीर,
1: जंजीर में जिससे हाँ पहचाना गया,
0: एंग्री यंग मैन।
1: एंग्री यंग मैन, एंग्री यंग मैन के नाम से पहचाना गया था। तो ये फिल्म शोले का और एक गीत और मैं कोशिश करूंगा रखने के,

0: क्या आपको पता है जब शोले फिल्म के पोस्टर लगे तो उसमें जो राइटर थे सलीम जावेद जी, उनका कहीं नाम नहीं था।
1: उनका कहीं नाम नहीं था तो क्या पोस्टर पे नाम लगाया जाता था उस समय पे?
0: हाँ जी, निर्माता, निर्देशक, संगीतकार, लेखक सबके नाम होते थे।
1: सलीम जावेद का नाम नहीं रखा गया था वो पोस्टर पे, और तो हुआ क्या?
0: तो फिर उन्होंने दोबारा से पोस्टर बनवाए और उस पर अपना नाम लिखवाया।
1: यानी कि पोस्टर पे अपना नाम लिखवाए ये सलीम जावेद का, रिटन बाय सलीम जावेद, ये सुंदर सा फिल्म जो 1975 में जाकर के रिलीज हुआ। और कहा जाता है कि रमेश सिप्पी ने ये बड़ा फिल्म बनाने का फैसला लिया था, पर उनका बजट कहा गया था 1 करोड़ था ना?
0: हाँ जी, उस समय में 1 करोड़,
1: उस समय के लिए 1 करोड़ बड़ा बड़का पैसा होता था।
0: बहुत ज़्यादा, अब भी ज़्यादा है।
1: और पर बनते बनते ये फिल्म बन गया था 3 करोड़।
0: हाँ जी, 3 तक पहुँच गई।
1: और 3 करोड़ हो गया था और ये फिल्म यानी कि बजट से बाहर को और खर्चा हुआ।
0: सही बात।
1: और शुरू शुरू में तो जब प्रीमियर पे आया तो डर गए थे कि ये फिल्म चलेगा नहीं।
0: हाँ जी, तो फिर सब कहते हैं अच्छा 1 हफ्ते तक देख लो कि क्या रिजल्ट निकलता है।
1: तो हफ्ता बाद जब रिजल्ट अभी पूरा नहीं हुआ था, फिल्म बस फिल्म के डायलॉग के माध्यम से फिल्म खूब चल पड़ा ना।
0: हाँ, इतनी लंबी लंबी लाइनें कि लोगों को कितनी, अरे घंटे लाइनों में लगना पड़ता था टिकट लेने के लिए।
1: कितने घंटे लाइनों में लगता था और टिकट लेने के लिए।
0: हाँ जी।

0: बड़ा बोझ है आप पर।
1: लेकिन बेटा, इस बोझ को कोई कुएं में तो फेंक नहीं देता। बुरा नहीं मानना, इतना तो पूछना ही पड़ता है कि लड़के का खानदान क्या है, उसके लक्षण कैसे हैं, कमाता कितना है।
0: कमाने का तो यह है मौसी कि एक बार बीवी बच्चों की जिम्मेदारी सर पे आ गई तो कमाने भी लगेगा।
1: तो क्या अभी कुछ भी नहीं कमाता?
0: नहीं नहीं, ये मैंने कब कहा मौसी, कमाता है, लेकिन अब रोज रोज तो आदमी जीत नहीं सकता ना, कभी हार भी जाता है बेचारा।
1: हार जाता है?
0: हाँ मौसी, अब ये कम्बक जुआ चीज ही ऐसी, अब मैं क्या कहूँ।
1: तो क्या जुआरी है?
0: छी छी छी छी मौसी, वो और जुआरी ना ना, वो तो बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है, लेकिन मौसी एक बार शराब पी ली ना, फिर अच्छे बुरे का कहाँ होश रहता है। हाथ पकड़ के बैठा लिया किसी ने जुआ खेलने, अब इसमें बेचारे वीरू का क्या दोष है।
1: ठीक कहते हो बेटा, जुआरी वो, शराबी वो, लेकिन उसका कोई दोष नहीं।
0: मौसी आप तो मेरे दोस्त को गलत समझ रही हैं, वो तो इतना सीधा और भोला है। अरे बसंती से उसकी शादी करके तो देखिए, ये जुए और शराब की आदत तो दो दिन में छूट जाएगी।
1: अरे बेटा, मुझे बुढ़िया को समझा रहे हो, ये शराब और जुए की आदत किसी की छूटी है आज तक?
0: मौसी आप वीरू को नहीं जानती, विश्वास कीजिए वो इस तरह का इंसान नहीं है। एक बार शादी हो गई तो वो उस गाने वाली के घर जाना बंद कर देगा, बस शराब अपने आप छूट जाएगी।
1: हाय हाय, बस यही एक कमी रह गई थी, तो क्या किसी गाने वाली के घर भी आना जाना है?
0: तो इसमें कौन सी बुरी बात है मौसी? अरे गाना सुनने तो राजा महाराजा और ऊंचे ऊंचे खानदान के लोग जाते हैं। हाँ?
1: अच्छा, तो बेटा ये भी बताते जाओ कि तुम्हारे ये गुणवान दोस्त किस खानदान के हैं?
0: बस मौसी, खानदान का पता चलते ही हम आपको खबर दे देंगे।
1: एक बात की दाद दूंगी बेटा, भले 100 बुराइयां हैं तुम्हारे दोस्त में, फिर भी तुम्हारे मुंह से उसके लिए तारीफ ही निकलती है।
0: क्या करूं मौसी, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं?
1: पक्का? भले सारी जिंदगी लड़की कुंवारी बैठी रहे, लेकिन मैं ऐसे आदमी से बसंती को नहीं ब्याहने वाली। सगी मौसी हूँ, कोई सौतेली माँ नहीं।
0: अजीब बात है, मेरे इतने समझाने पर भी आपने इनकार कर दिया, बेचारा वीर ना जाने क्या करेगा।

0: सलीम जावद के लिखा हुआ डायलॉग मौसी का भी कितना सुंदर सा डायलॉग है ना बबली।
1: हाँ जी, मौसी जी का डायलॉग, और वो भी डायलॉग जो धर्मेंद्र टैंकी के ऊपर चढ़ के मौसी को गाली देते हैं।
0: ऐसे उसमें मेरे ख्याल से उस समय पे भी डायलॉग, सिर्फ डायलॉग से एक एलपी भी बनाया गया था ना, वो जो भारत में लोग खरीद सकते थे, वो सूरीनाम में नहीं आया था मेरे ख्याल से। तो लोग लाइन में खड़े हो करके, और सभी डायलॉग जो बनाया गया, जो लिखा गया था और जो आवाज़ में रखा गया था, लोग बहुत पसंद करते थे उस समय पे, और आज भी वो अभी तक लोग भी पसंद करते हैं ना।
1: हाँ, क्योंकि जब मर्जी हो तो डायलॉग सुन सकते हैं।
0: हम एक गीत और, यानी कि सलीम जावद के फिल्म, उसी प्रकार से उन्होंने फिल्म शान मेरे ख्याल से और बनाए लिखे थे।
1: हाँ जी, शान भी थोड़ी शोले की तरह थी, लेकिन वो लोगों ने इतनी पसंद नहीं की जितना शोले पसंद की।
0: शान उतना नहीं चला था मेरे ख्याल से
1: ना, शान से ज़्यादा दीवार चली थी। दीवार भी 1975 में आई।
0: दीवार फिल्म, वो भी सलीम जावद के लिखा हुआ, 1975 में वो रिलीज हुई।
1: हाँ जी, और वो ये एक्शन और क्राइम ड्रामा फिल्म थी।
0: एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म। दीवार फिल्म में भी कुछ सुंदर सुंदर गीतों भी थे ना।
1: गीत भी थे, और ये दो भाइयों की कहानी थे।
0: दो भाइयों की कहानी।
1: हाँ जी, और उसके डायलॉग भी बहुत मशहूर हुए। और एक भाई इंस्पेक्टर होता है, और एक भाई, अरे बाद में पहले छोटे मोटे क्राइम करता है, फिर बाद में बड़ा चोर कह लो या कुछ ऐसे बन जाता है। यानी कि एक अमिताभ बच्चन और शशि कपूर, परवीन बॉबी, नीतू सिंह, इन सब ने इस फिल्म में काम किया था। इस फिल्म में काम किया था अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, नीतू सिंह, परवीन बॉबी, निरूपा राय।
2: या चुप रहूं
3: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है?
3: क्या है?

सुनने वालों, ये फिल्म दीवार से निकाला गया ये सुंदर सा गीत उसी समय के बात है जब सलीम जावद का जोड़ी थे तो बनाया गया फिल्म शान, और फिल्म शान से ये निकाला गया ये सुंदर सा गीत मैं प्लेयर पे चुन करके रख चुके हैं।

यहाँ तक जो मेरे हिस्से के कार्यक्रम हमने और आपके लिए प्रस्तुत किया। हमारे साथ दिए बबली आसरा जी भी और मैं हूँ आपका सेवक संजय, और यही आशा रखता हूँ कि आपका कार्यक्रम भी कुछ न कुछ रूप में अच्छा लगा होगा। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।

तो सब कुछ है और रहेगा, हम भी रहेंगे शायद। ये भेष भूषा में नहीं बल्कि हम पूर्ण जन्म में फिर से वापसी आ

बाबा बाबा बाबा इस दीवाने दिल ने क्या जादू चलाया।

ढल जाए मोहम्मद रफ़ी जी के सुंदर सी आवाज़ में, प्यार भरी आवाज़ में सुना दिए। इस बार है दिन है बहार के फिल्म वक्त से।

कहना चाहता हूँ

बात है, क्या बात है, रोना तो नहीं चाहते हैं, बस हंसते हंसते जिंदगी गुजारे मेरे दोस्त, क्योंकि वक्त दोबारा नहीं आता, ये जिंदगी भी दोबारा नहीं मिलती। फिल्म भूत बंगला से ये गीत आप

कोई और ना मिले क्या बात है कि दुआ है कि तेरी मोहब्बत के सिवा कोई और ना मिले। जिंदगी में सिर्फ तू मिले, जिंदगी में सिर्फ तू मिले या फिर जिंदगी ना मिले। क्या गहराई है, क्या गहराई है ये शेर शायरी में।

सच में कहा मैं भी कहती हूँ कि ना मुँह छुपा के जियो और ना सर झुका के जियो, जिंदगी में जैसे भी है बस मुस्कुराकर और आगे बढ़ते रहना। दुख जो आए तो पल में वो भी खत्म हो जाएगा। मुझे दुनिया भर की खुशी नहीं चाहिए मेरे दोस्त, मुझे दुनिया भर की खुशी नहीं चाहिए, मुझे हर सुखी हर खुशी में तुम और तुम्हारा साथ चाहिए। हाँ, मेरी हर खुशी में तुम और तुम्हारा साथ चाहिए। दिल में न जाने कैसे इतनी जगह बन गई है कि दिल में न जाने कैसे इतनी जगह बन गई है, तेरी एक मुस्कुराहट मेरी जाने की वजह, मेरे जीने की, जाने तो नहीं बल्कि तुम्हारे पास आने की वजह बन गई है।

क्या बात है, फिल्म गुमराह से यहाँ से आपके लिए स्पेशल स्पेशल सभी लिसनर्स के लिए पेश किया गया है। और इस बार आपके लिए प्लेलिस्ट पर है कि दिल के देखो चेहरा को ना देखो चेहरा।

सारा यहाँ भूल जाते हैं हम। तेरे एक मुस्कान पर हम खुद को हार जाते हैं। लफ्जों में कहाँ

रात आपको हम यहाँ से सुनाए, देखो तो कहाँ आई, कहाँ चला गया। हाँ, वादा था सुनाने के लिए आपको कि दिल को देखो, चेहरा ना देखो।

वाकई में दिल सच्चा और चेहरा झूठा फिल्म सच्चा झूठा से आपके लिए यहाँ से पेश किया गया है। ये दो लाइन आप जरूर सुने और इस पे थोड़ा से गौर करें और अपने आसपास में जरूर से ख्याल करना कि इंसान जितना अंदर से अकेला होता है उतना ही बाहर से मुस्कुराता है। ये हकीकत है। आप जरा अपना इर्द गिर्द में संगठन में बैठना, दोस्तों में बैठना, तो आप थोड़ा से ख्याल करना।

वही फिल्म से निकाल दिया गया है, फिल्म सच्चा झूठा। किशोरदास जी की आवाज में, किशोरदास जी की आवाज में कितना गर्मी है, कितना प्यार है, कितना एहसास है, वाओ। ठंडा मौसम हल्की बारिश, हाथ में उसका हाथ था, चार कदम साथ चले थे, हाँ सात कदम साथ चले थे, आँख खोली तो ख्वाब था। हाँ ये ख्वाब जो हम देखते हैं ना बैठ के आँख मूंद कर सोकर, कभी कभी हम जागते हुए भी ख्वाब देखते हैं। तो जो आप ख्वाब देखते हैं ना मेरे दोस्त, कोशिश करना कि इसके हकीकत बना लेना। हाँ जो पॉजिटिव खदाखते हैं ना, दैट यू ऑली ऑली पॉजिटिव खदाखते व्हाट यू थिंक दैट दी मार इन फरफेलिंग कॉम। तेरे बिना हर खुशी अधूरी सी लगती है, तू पास हो तो हर मुश्किल आसान लगती है।

और यहाँ से आपके लिए एक खूबसूरत गीत सुंदर आवाज में, और फिल्म का नाम यहाँ से हम आपको बता देते हैं, फिल्म का नाम है ऊंचे लोग और ये फिल्म पिक्चराइज किया गया है 1965 में, हाँ मोहम्मद रफी जी की आवाज में फिरोज खान ये गीत को प्लेबैक की है, तो सुनेंगे हम कि जाग ए दिले दीवाना।

वेरी रोमांटिक गीत है, अल्फाज है इनमें और इनकी धुन जो है कितने रोमांटिक से ये गीत, रोमांस वाला गीत और रोमांटिक मूड में ये भी हमको सुना दी है। और ये कौन था? हाँ, मोहम्मद रफी जी के सिवा और कौन हो सकता है। से भी महंगी भावनाएं होती है मेरे दोस्त, कि समय से भी महंगी भावनाएं होती है, जो समझो उसी पर खर्च जरूर से करना। जो आपको समझे, आपके भावनाओं को समझे, उसी पर अपना जीवन जो है, जो पल है, जो खुशियां है, उसी पर खर्च

में हो। हाँ, ख्वाहिश इतने हैं कि कुछ ऐसा मेरे नसीब में हो, वह चाहे जैसा भी हो, बस तुम मेरे करीब रहो। और इस बार थे फिल्म जूली से माय हार्ट इज बीटिंग। धड़कता है माय हार्ट

वाओ, कितना सुंदर, कितना प्यार भरे गीत, तुम तो प्यार हो। कितने मिठास है ये सब गीतों में और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जो इसमें सब रचाई गई है।

तुम पर भी यकीन है और मौत पर भी एतबार है। देखते हैं पहले कौन मिलता है, देखते हैं पहले कौन मिलता है, हमें दोनों का इंतजार है। जीवन साथी कब मिले ये पता नहीं, और मौत कब आए ये भी पता नहीं। तो मैं कहती हूँ कि मौत का इंतजार मत करो, वो तो हर पल पे आ जाएगा। बात ये है कि अपना जीवन जो है उसे खुल कर जियो।

उम्मीद है कि सिर्फ दिल नहीं हम मेरी, बल्कि आपके दिल भी वैसे ही गाता रहे मेरे दोस्त, गाता रहे मेरे दिल। फिल्म गाइड से निकाल दिया गया है और ये फिल्म मेघंतीर फैफन सेस्तक में पिक्चराइज किया गया है। और फिल्म गाइड के बाद बात आपको लेकर चले हम मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत पल में कि मेरी मन की गंगा और फिल्म संगम से मेघंतीर फैफन सेस्तक ये पिक्चराइज

बात हुई ना कि होगा होगा और जरूर होना ही चाहिए संगम। मैं ये कहती हूँ संगम तो होना चाहिए, पर किससे होना चाहिए ये भी समझ बूझ कर, और बंधन में बांधो मेरे यारो। सहेली हो यारो हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, सहेली है जो भी बंधन है, ये संगम जो है इसे समझ बूझ कर रिश्ता जोड़ो। फिल्म संगम से हाँ छलांग तो मार दी इस बार, चले सुने या हो।

या माय दोस्त, याहू, चाहे कोई मुझे जंगली कहे जाए, जा कहे, नेवर माइंड नेवर माइंड। और उसके बाद कि आज फिर जीने की तमन्ना है, फिल्म गाइड से फिर एक बार से

हाँ जी ले भैया जी ले, मरना तो एक दिन तो है, पर आज जो मिले हैं ये जीवन, बहुत प्यार के साथ ये जीवन हमें मिले है, मिला है। और ऐसे अभी कई अन्य शिशु को जन्म जो हुआ था है, तो उनको भी हार्दिक से स्वागत है ये।

रुको रुको तो जरा, इतना जल्दी जल्दी तो ना होना चाहिए। अजीब दास्ता, हाँ अजीब दास्ता है ये रिश्ता, ये सभी जो है कि हम कभी कभी ऐसे रिश्ते में पास पास में बैठे रहते हैं, और आजकल तो मोबाइल जो है ना पास पास में बैठे रहते हैं, पास पास में सोते रहते हैं, एक बिस्तर में सोते रहते हैं, पर अजनबी की तरह जीवन गुजार रहे हैं। मैं कहती हूँ समय के देखकर मोबाइल जो है ना वह कभी कभी अपने से दूर करके

मार देना। नहीं थे एक ही छत के नीचे रहकर अजनबी की तरह जीवन गुजारेंगे। ये होता है तो इससे हमें बचना है, और उसके बाद बस ये हो।

आपने सुने, मैं भी सुनी दिल लगाकर, और सुनी फिल्म का नाम असली और नकली। मेरे दोस्त, असली और नकली नेखन तीन ट्विंस एस्ता के ये पिक्चराइज हुआ फिल्म है। हाँ, कौन असली है कौन नकली है ये समय के अनुसार सब पर्दे से बाहर आ जाता है। असली नकली के बाद चलते हैं सुनने के लिए फिल्म काला बाजार से, और 2 साल पुराना गीत है, और ये है नेखन तीन सस्ता के। हाँ, नेखन तीन तीन सस्ता के बाद 2 साल पुराना नेखन तीन सस्ता के काला बाजार से निकाला गया है ये गीत।

ये चलाना कितना आवश्यक थे मेरे दोस्तों, कि खोया खोया चांद कितना रोमांटिक गाना, बस आपके लिए सिर्फ आपके लिए पेश हो रहा है फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। उसके बाद हाँ, 5 बरस और पुराना हम आपको गहराई में ले चलते हैं। जितनी गहराई में हम जाएंगे उतने ही चमकदार हीरा हमको मिलेगी। इस बारे प्यार हुआ, इकरार हुआ सिर्फ 420 में से।

तमन्ना दे और लता जी की आवाज में। जैसे आपसे बताए फिल्म 420 पे निकटीन 55 तक में ये पिक्चराइज हुआ फिल्म। हाँ, ये गीत मैं अभी रोकती हूँ, ये बात आपसे कहना है इसलिए मैं रोक रही हूँ ये गीत। Let up your manier, groei op jouw wijze। हाँ, अपने ही ढंग से अपना रास्ता कायम करो। तो मैं बताती हूँ चार ऐसा है, चार ऐसा जैसे आप सोच सकते हैं और जैसे चार किस्म के लोग हैं। तो पहला है जो ड्रोमर है, हाँ वो सपना देखते हैं। तो अगर ड्रोमर को सुनिए जी, ड्रोमर कैक नार मोगलिकहेदन, ड्रोमर कैक नार मोगलिकहेदन एन एरफारिंगन एन स्टर्क कंटेंट फन ड्रोमर दी सेन। से सेन क्रिएटिव verbeeldingskracht hebben ze en reflectief zijn ze en ook nog gevoelig voor ervaringen. Ze allemaal sterke punten gaan. En de valkuilen van een dromer die zijn blijf hangen. Blijven hangen in hun ideeën en moeite hebben met keuzes maken, ook nog verlies in focus. Dat zijn de kenmerken, sterke en valkuilen van een dromer.

के लिए चुन चुन कर और लाया जाता है आपका हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से मेरे दोस्तों, सही टाइम पे सही गीत चलाना कितना अच्छा लगता है और हम उसमें डूब जाते हैं, यादें जो है ताजा कर देते हैं। एर कॉम्प्ट मोमेंट चेनित हार दरखात फेख्तन, ये बात तो सही है। एर कॉम्प्ट मोमेंट चेनित हार दरखात फेख्तन मार तेलर खात लोसलातन एंड लोसलातन दैट इज सेर बलांगरेक द फरलिख्त ई खात अन हेले अंदर गफूलंस

ये टाइटल गीत आपके लिए पेश किया गया है जो 1951 में पिक्चराइज किया गया है। आज के प्रोग्राम में शामिल कर दिया गया है मन्ना दई जी, रफ़ी जी, मुकेश जी, लता जी, आशा जी। सभी जी यहाँ से हमको

0: प्यार करे मुझसे, प्यार करे मुझसे, इस हार करे किसी और से, खुदा करे जिसे उसे हार करे वो भी प्यार करे किसी और से। आरंभ होता है क्या हुआ तेरे वादा दर भर गिर ब्रोकन हार सॉन्ग का प्रोग्राम। पहला डर भरा गीत, खुशी खुश रहो तू सदा, ये दुआ है मेरी पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में।
1: और कीजिए कि दिल से निकली हुई शायरी की कुछ बूंदे बरसा दीजिए, तभी रंगीन महफिल में बहारें आ जाएंगी।
2: इस मौके के लिए मेरे पास कोई कला नहीं है।
1: वाह साहब वाह वाह वाह वाह वाह, सुना साहबान, हमारे शायर आजम फरमा रहे हैं
3: इस मौके के लिए इनके पास कोई कलाम
1: नहीं है। अजी अपने चाहने वालों को आप कुछ भी सुना दीजिए, हम समझेंगे कि आपने हमारी शादी का तोहफा दे दिया।

ये भी होता रहता है प्यार मुझसे और शादी एक दूसरे से। जब जीना है तो फूलों की तरह महकते रहो, फूलों की तरह महकते रहो, सितारों की तरह चमकते रहो। किस्मत से मिली है ये जिंदगी, किस्मत से मिली है ये जिंदगी, खुद भी हंसो औरों को भी हंसाते रहो। की बार मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, माइटी मुकेश की आवाज में।

ब्रोकन हार्ट सॉन्ग क्या हो तेरे वाला डर भर गीत के प्रोग्राम में आपकी बार घुंघरू के तरह बजता ही रहा हूँ मैं किशोरदा के आवाज़ में।

साथ साथ जो खेले थे बचपन में, साथ साथ जो खेले थे बचपन में, वो अब सब दोस्त थकने लगा है, वो अब सो दोस्त थकने लगा है, किसी के पट निकल आया है, किसी के बाल पकने लगा है, सब पर भरी जमींदारी है, सब कोई छोटी मोटी कोई बीमारी है, सबको छोटी मोटी कोई बीमारी है, दिन भर जो भागते दौड़ते थे सब धीरे धीरे चलने लगा है, उफ क्या कयामत है, किसी की लून की फिक्र है, कहीं हार्ट अटैक से शिकर है, फुर्सात को सबकी कमी है, आँखों में अजीब से नमी है, कल जो प्यार के खत लिखते थे, उफ क्या कयामत है, सब दोस्त थकने लगा है, देखकर पुरानी तस्वीर आज जी भर आता है, क्या अजीब सा ये वक्त है, किसी तरह गुजर जाता है, कल का जवान दोस्त मेरा आज अंधेरे में नजर आता है, कल की ख्वाब सजाते थे जो आज गुजरे दिनों में खोने लगा है, उफ क्या कयामत है, सब दोस्त थकने लगा है।

क्या हुआ तेरे वाला दर्द भरे गीत ब्रुकनहा सॉन्ग का प्रोग्राम यहाँ से समाप्त होता है। जैसे मैंने वादा किया दोस्तों, तो ब्रोकन हार्ट सॉन्ग के प्रोग्राम के बाद सितारों का सफ़र आप सुनेंगे, और सितारों का सफ़र में आज के प्रोग्राम में आप नंदा के बारे में कुछ बातचीत होगा।

फिल्म एक्ट्रेस नंदा की जन्म 8 जनवरी 1939 को महाराष्ट्र मुंबई में हुई। नंदा के पिता का नाम विनायक दामोदर कन्नताकी था। उन्हें मास्टर विनायक के नाम से लोग बुलाते थे और वो एक सक्सेसफुल मराठी एक्टर, प्रोड्यूसर और

नंदा के अपने घर में, नंदा अपने घर में सात भाई और बहन में सबसे छोटी थी। इस तरह नंदा को पिता का प्यार बहुत कम मिलते थे। इसके बाद नंदा की परिवार बहुत मुश्किल में पड़ गया। नीति अख्तन फेर तक में नंदा 9 साल की उम्र में पहली बार बीबी नंदा के नाम से फिल्म मंडिल में आए। नंदा निखिल अख्तर फेर तक से निखिल सेशन फेर तक बीबी नंदा के नाम से फिल्म में काम करती थी, जैसे कि फिल्म मंडिल, जग्गू, अंगराई और जगरीति। नंदा दोस्तों, नंदा ने शशि कपूर के साथ फिल्म जब जब फूल में काम किया और उसी फिल्म का एक सॉन्ग आप सुनेंगे।

नड्डा की अंकल फी सीताराम ने 1956 में अपनी फिल्म टूफा और डिया में नड्डा को काम दिया। 1956 में फिल्म भाभी में नड्डा फिर पहली बार फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की प्राइज पाई। फिर इसके बाद फिल्म काला बसार में भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की प्राइज पाई और फिल्म धूल का फूल भी एक अच्छी फिल्म थी। निहिर फेस्टक में नंदा फिल्म छोटी बहन में एक अंधी लड़की की रोल बहुत अच्छी से की। इस फिल्म में नंदा बलराज सहनी और रहमान के छोटी बहन थी। फिर निहिर फेस्टक में नंदा देवानंद के साथ फिल्म हम दोनों में होफ रोल का काम किया। इसके बाद फिल्म तीन देबिया में भी अच्छी काम किया और बे एस छोपड़ा की फिल्म कानून में भी काम किया। निहिर फेस्टक में नंदा फिल्म आचल में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की प्राइज पाई। नंदा राज कपूर और पद्मिनी के साथ फिल्म आशिक में भी अच्छी काम किया। नंदा ने फिल्म गुमनाम में मनोज कुमार के साथ काम किए और उसी फिल्म का एक सॉन्ग

नंदा रजनी कुमार के साथ तीन फिल्मों में काम की, नीरी सेशन 5 तक में, तूफा और डिया नीरी सेस तक में, कानून और नीरी इन सेस तक में ढोल का फूल। नंदा शशि कपूर के साथ भी कितने फिल्म बनाई, नीरी इन सेस तक में चार दीवारी, नीरी ट्विन सेस तक में मेहंदी लगी मेरी हाथ, नीरी फेफन सेस तक में जब जब फूल खिले, सेशन सेस्तक में नींद हमारी ख्वाब तुम्हारी, नीघ्न सेस्तक में राजा साहेब और नीघ्न सी फिल्म तक में रूठा ना करो। नीघ्न फेफन सेस्तक के बात है कि फिल्म गुमनाम को जिसका गीत अभी मैंने पेश किया, इस फिल्म में मनोज कुमार के साथ अच्छी काम किया। नंदा धर्मेंद्रा के साथ फिल्म मेरा कसूर में काम किया और फिल्म आकाश। नीरी नीघ्न सेस्तक में राजेश खन्ना के साथ फिल्म इस्तफाक में बेस्ट एक्ट्रेस के प्राइज पाई और नीरी सीफतक में फिल्म द त्रीन और नीरी त्वीन सीफतक में जोरू का गुलाम में भी अच्छी काम की। नंदा फिर जितेंद्रा के साथ फिल्म परिवार और धरती कहे पुकार के इस फिल्म दोनों फिल्म में काम की। संजय के साथ फिल्म बेटी और अभिलाषा में भी काम की। नंदा अपने सहेलियों के कहने पर फिल्म डायरेक्टर मनमोहन देसाई से शादी की या करने वाली थी, लेकिन अभी गीत के बाद मैं आपसे बताऊंगा।

नंदा नंदा अपने सहेलियों के कहने पर फिल्म डायरेक्टर मनमोहन देसाई के साथ शादी करने वाली थी, जो नंदा से उम्र में बड़ा था। मगर शादी से पहले मनमोहन देसाई की मौत अपने फ्लैट की बालकन से गिरने से हो गई। इस घटना के एक साल पहले नंदा की माँ की मौत कैंसर द्वारा हुई थी। नंदा बॉम्बे में कुछ परिवार के बीच रहती थी। नंदा के कुछ करीबी सहेलियों भी थी, जैसे वहीदा रहमान, आशा परेख, हेलन, सायरा बानू, मारासीना, शकीला और सबीन जलील। दुख की बात यह है कि नंदा की मृत्यु 75 या फेफड़े सीफन तक साल की उम्र में फेफड़े मार्च 2014 को मुंबई वोरोसोवा रेसिडेंस में हार्ट अटैक से हुई

तारों का सफर यहाँ से समाप्त होता है। दिल में क्या है, आप फिल्म जरूर देखोगे। जितेंद्र और मुमताज दोनों का फिल्म जिगरी दोस्त का सॉन्ग आप सुनेंगे।

0: सजने में सुलगते हैं अरमान। एक बार फिर जगदीप सिंह के आवाज में दोस्तों आप सुनेंगे कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
1: प्रोबेशन
0: क्लोज टू माय हार्ट का सिलेक्शन है

सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ। अब की बार दोस्तों मैं चला जाता हूँ श्री नामदेश, वहां पर रहता है उस्ताद जॉनी बच्चू। और जॉनी बच्चू क्या फरमाएंगे, जिस दिन जिस दुनिया से नफरत मैंने खोजा है दोस्तों, और कई सिलेक्शन मैंने पाया है, और सभी सिलेक्शन में से मुझे ये गीत सबसे अच्छा लगा, तो मैं सोचता हूँ आप सभी से मैं ये गीत बांट लूँ जॉनी बच्चू के आवाज़ में।

वाह क्या आवाज है मिस्टर जॉनी। बच्चू की आवाज में भी आप गीत को सुना रात कली। ये रात कली कभी जो है जो वो कभी कभी सोने नहीं देते हैं, फिर भी ख्वाब में आए हैं।

रात्रि कली तो वादा किया है एक बार फिर ख्वाब में आने को। दोस्तों आपको सिर्फ सोना पड़ेगा, रात्रि को आग बंद कर लेना तो रात कली जरूर आ जाएंगे आपके ख्वाब में। ये दिल का रिमिक्स है लेडी संजना एंड मिस्टर मुका।

जब हम सड़क पे चलते हैं, रास्ते पे चलते हैं, कभी कभी लिफ्ट में, कभी कभी सुपर मार्केट में भी बहुत अजनबी लोगों से मुलाकात होते हैं, लेकिन एक अजनबी हसीना जब मिल जाता है तो क्या बात हो जाता है।

प्यार का नखमा है। प्यार तो दुनिया में कई लोग ने किया है, सभी कोई प्यार किया है। प्यार चांदर ने किया है, प्यार नली ने किया है, प्यार विद्या ने किया है, प्यार आशा ने किया है, प्यार रोशन ने भी किया है।

प्यार का नगमा है जिंदगी कुछ भी नहीं, जिंदगी कुछ भी नहीं सिर्फ तेरी मेरी कहानी है। इन हवाओं में, इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकार। रिमिक्स सॉन्ग।

लफ्जों के है दिल की कहानी, दो लफ्जों की है दिल की कहानी, दीपावली सुमैया के आवाज में।

0: दिल की कहानी, दिल की कहानी के बाद दिल की चैन है दोस्तों। ये दिल का चैन है जो है, ये कब मिलता है? जब दिल खुश रहता है, जब प्यार हो जाता है तो दिल खुश रहता है वगैरह वगैरह। लेकिन जब दिल को चोट लगता है तो ये जितना चैन है सब चला जाता है। इसलिए दिल का चैन जो है हमेशा जोड़ते रहना, साथ रखना और कभी मत छोड़ना।
1: अपनी बहुत ही मेलोडियस आवाज में वो एक नहीं बल्कि अनेक गानों की कुछ प्यार की, अभी गाना भी ए पे है बराबर, तो हमें बहुत फक्र है कि मैं सुर लगाना, वो जो कॉम्प्लीमेंट किया कि आपने सब

आप सुन रहे थे शीघ्र होता है जब कयामत का, दवाई थी मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी माई लव से हमने पेश किए हैं। रुक जा ऐ हवा लता जी आपको सुनाने वाले हैं ये सुंदर सा गीत, आप सभी के वास्ते हम पेश करते हैं फ्रॉम द मूवी शागिर्द से आप सुनेंगे।

0: अभी आप सुन रहे थे रुक जा ए हवा, हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते। इंसान का जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल है। अगर दिल ही साफ नहीं तो चमकते चेहरे का कोई फायदा नहीं। फ्रॉम द मूवी आरसू से हम पेश करते हैं, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं और गीत का बोल है ए नर्क इसे मस्ताना।
1: ए नर्क

ये आप सुन रहे थे एनर की से मस्ताना, बस इतनी शिकायत है। एक बहुत सा सुंदर सॉन्ग हम चुन कर रखे हैं आप सभी के वास्ते, और लता जी आपको सुनाने वाले हैं मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ, और वो ये है, ज़िंदगी सब्र करना सिखाती है, ज़िंदगी सब्र करना सिखाती है और सब्र जीना सिखाता है।

लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए। जिंदगी तो हल्की फूकी सी है, जिंदगी तो हल्की फूकी सी है, सारा बोझ तो ख्वाहिशों का है।

अभी आप सुन रहे थे मैंने देखा तूने देखा, लता जी के साथ में किशोरदा आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी दुश्मन से हमने पेश किए हैं। कोशिश करना कि जिंदगी में वो शख्स आपको हमेशा मुस्कुराता हुआ मिले, जो आपको रोज आईने में दिखाई देता है। कान में झुमका, चाल में झुमका, फ्रॉम द मूवी सावन भादो से हम पेश करते हैं। मोहम्मद रफी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे कान में झुमका, जाल में ठुमका, लगे पशासी झटके। और अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो ये है। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं सर आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी, और वो ये है, इंसान तो हर जगह पैदा होते हैं मगर इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। कहाँ चल दिए इधर तो आओ, फ्रॉम द मूवी झुक गया आसमां से हम पेश करते हैं।

0: लीजिए।
1: अभी आप सुन रहे थे झुक गया आसमां से, कहाँ चल दिए इधर तो आओ, मेरे दिल को न ठुकराओ, बोल सितमगर मान भी जाओ। मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे। हाँ, मैंने भी प्यार किया मुकेश जी के साथ में सुमन कल्याणपुर जी आपको सुनाने वाले हैं। लोग हमारी कदर उस वक्त नहीं करते जब हम अकेले हो, बल्कि उस वक्त करते हैं जब वो अकेले हो।

फ्रॉम द मूवी बुन जो बन गए मोती, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। मोहम्मद रफ़ी जी और सुमन कल्याणपुर जी आपको सुनाने वाले थे। प्रोग्राम को हम और आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों, और मंजिल इंसान के हौसले आजमाती हैं, मंजिल इंसान की हौसले आजमाती हैं। किसी भी बात से हिम्मत ना हारना मेरे दोस्त, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। आप यहाँ आए किस लिए? किशोर दा आपको सुनाने वाले हैं साथ में आशा जी के साथ।

0: ले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: आज देखिए तो क्या हसीन रात है।
1: ओहो

0: अपना बना लो, हाथ जरा थाम लो, बार बार पूछो ना, दिल से भी काम लो।
1: काम का बताओ।
0: काम सीधा साधा है,
1: बोलो बोलो।
0: आज लेना एक वादा है,

0: आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: अभी आप सुन रहे थे आप यहाँ आए किस लिए, आशा जी के साथ में किशोर दा आपको सुनाने वाले थे। सुंजा आ ठंडी हवा, थमजा ए काली घटा आप सुनेंगे। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी, और वो ये है, कुछ मजबूत रिश्ते बड़ी खामोशी से बिखर जाते हैं, कुछ मजबूत रिश्ते बड़ी खामोशी से बिखर जाते हैं, कुछ लोग खुद टूट जाते हैं दूसरों की खुशी के लिए।

किशोरदा और लता जी आपको सुनाने वाले थे सुंजा आ ठंडी हवा फ्रॉम द मूवी हाथी मेरे साथी से हमने पेश किए

अभी आप सुन रहे थे दिल की गली। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं उसका बोल ये है, तेरे बिना ये दिल।

अभी आप सुन रहे थे तेरे बिना ये दिल प्यार हो जाएगा।

अभी आप सुन रहे थे मेरे रहनुमा, तेरे इश्क की गलियों से आप सुनेंगे सुनने वालों।

अभी आप सुन रहे थे तेरी यादों में। चलिए ये सॉन्ग हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते, दियो तेरी यादों में।

अभी आप सुन रहे थे दिल तेरी यादों में, एक सॉन्ग हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते, तूने नजरें झुकाई तो क्या हुआ।

मत हो उदास, मैं हूँ तेरे पास हमेशा हमेशा। भी आप सुन रहे थे शान जी की आवाज़ में। बड़ी उदास है जिंदगी, कोई तो साथी चाहिए। फ्रॉम द मूवी कसूर से हम पेश करते हैं कुमार सानू, आपको सुनाने वाले हैं।

हमद मौफी कसूर से हमने पेश किए है, बड़ी उदास है इस जिंदगी, कोई तो साथी चाहिए, कुमार शानू आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी खूबसूरत से हम पेश करते हैं सुनने वालों, कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति आपको सुनाने वाले हैं। मेरा एक सपना है कि देखो तुझे सपनों में,

कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति के आवाज में भी आप सुन रहे थे मेरा एक सपना है कि देखो तुझे सपनों में तू माने या माने है तू ही मेरे अपनों में। जमाना दीवाना है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं, क्या पेश करने वाला है बताओ, क्या नहीं बताने वाली आप खुद सुन लीजिएगा।

आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी जमाना दीवाना से हमने पेश किए हैं। अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है। जीत है फिल्म का नाम। सोनू निगम और अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में, अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरे बाहों में हो। एक और सुंदर सा गीत हम पेश करने वाले हैं आप सभी के वास्ते, और जरा सा हम देखें तो ये गीत खास करके हम पेश करते हैं शर्ली जी के लिए। और शर्ली जी जबकि हमारे प्रोग्राम को भी सुन रही है तो वो क्या कहते हैं, खुद मोर खसात प्रख्तख मोये लीचस और एक सित लेकर इरफान तखनीतन एंदर आदि उस्ताद हार्टान। तो शर्ली जी आप ही के नाम ये सुंदर सा गीत हम पेश करते हैं, कोई मेरे दिल में है जो भी है वो अपना सा है।

आप सुन रहे थे द टाइटल फ्रॉम द मूवी कोई मेरे दिल में है। आपको सुनाने वाले थे कुमार सानू के साथ में अनुराधा पौडवाल जी, और ये गीत हमने पेश किए हैं शुरली जी के नाम, जबकि शुरली जी हमारे प्रोग्राम को सुन रही है। फिजा है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से आप सुनेंगे दिल मेरे ना और इंतजार कर।

0: BGL reizen, driedaagse Londen, toen live in concert met Jubin Nauteliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. Driedaagse Londen, toen BGL reizen, live in concert Jubin Nauteliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubin Nauteliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, fris drank, water in de bus. Een concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering. Bel Bridge op 06-300-1701 of mail naar bglreizen@outlook.com. हर काम के लिए, हर एडवर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक. अब टेलीफोन नंबर 07-36-523-2047. मेर इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofvijver, het Vredespaleis en je eigen Fahun Hindustani Radio.

कुदरत के है करिश्मा एक दूसरे से मिलना, दुनिया के सरसमी पर किस्मत को आजमाना, ये प्रेम का जहां है हरगिज न भूल जाना, आपस से है मोहब्बत, आपस से है मोहब्बत ये धर्म है सिखाता। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार, अदाबरसो। घर की ओर देखता हूं तो 4:04 बीत गया है। फाहौन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुन है। शुक्रवार है, अक्टूबर के 2 तारीख, और यहां से आरंभ होता है प्रोग्राम गीतों का संगम। पूरे 6 बजे के प्रोग्राम जारी रहेगा। अब से लेकर 4:30 मिले जुले गीतों के साथ आपका दिन बहलाऊंगा। उसके बाद 4:30-5 के अंदर आइटम बयान जो रहेगा वो है मुझे, हर गीत जो मुझे सुरोता, लगभग 1.5 घंटे तक आपके लिए मैं पेश करूंगा। प्रोग्राम में छोटे छोटे खबरें, फील बरिख्त, मौसम के समाचार और स्पोर्ट बरिख्त आप सुनते रहना। छह बजे के बाद मिस्टर जॉनी नंबर 1 का प्रोग्राम चलेगा दोस्तों, खासकर उसका न्यूज बरिख्त जो है आप जरूर सुनते रहना। शुक्रवार है, वीकेंड भी है, जो भी करना है सोच समझ के कीजिए। जन परिवार घर में दुख दुख में साथ देते हो, जहां पर खुशियां है बहुत से बधाई पेश हो। देश का सबसे बड़ा बाजार जो है हाक स्मारक खुला हुआ है दोस्तों। अगर आप बाजार पे चल रहे हो या बाजार जाना चाहते हो तो हम आपसे ही कहना चाहते हो कि अपन ऐखा दो में जो है शराब बचाए के रखना, इसलिए कि बाजार पर बहुत से साकर रोलर घूमता रहता है।

हर एक काम जो आपको रेडियो के जरिए कराना है, जैसे कि खास फरमाइश, जरूरी खबर, मृत्यु समाचार वगैरह वगैरह, कॉन्टैक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 0 से 5 3 6 5 2 8 2 8 4 0 हमारा तार का नंबर।

दिल दिल दिल दिल दे जाओ, उसके बदले जान ले जाओ, क्या बात है। दिल के बदले जान भी मिल जाता है दोस्तों, इतना इतना मकलक है, हम लोग कहते हैं इतना सही है कि दिल दे दो और ऊपर उसके बदले आपको जान मिल जाते हैं। ये होता रहता है। फाह हिंदुस्तानी रेडियो का शाम का प्रोग्राम गीतों का संगम आप सुन रहे हैं।

घर की ओर देखता हूँ दोस्तों, तो साढ़े चार का वक्त है। आइटम को शुरुआत में करता है और आज शाम का आइटम जो है वो है मुझे, हर एक गीत जो मुझे शुरू होता लगभग आधे घंटे तक मैं आपके लिए पेश करूंगा। आपको सिर्फ तार करना है, दो तार का नंबर मैं देता हूँ, लिख कर रख लीजिए। न्यूल सीफन तक द्री सैस फाइव टुई टुई फिर सीफ, या न्यूल सीफन तक द्री सैस डबल टुई न्यूल डबल सीफ पर आप तार करिए। आपके नाम में जरूर एक गीत रख दूंगा। पहला सॉन्ग जो मैं रखा हूँ, मुझे प्यार के जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार के जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना खुशी देने वाले, ये एक डुएट है पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी एंड आशा दोनों का गायक गीत है। और ये सॉन्ग हैंगलोक के रहने वाला श्रीमान चंद्र रघुनंदन और साथ ही साथ उनका जीवन साथी नैली एक दूजे के लिए ये गीत पेश है।

मुझे प्यार के जिंदगी देने वाले श्रीमान चांदर रघुनंदन और जीवन साथी नैली एक दूजे के लिए गीत को मांग किए थे। इस वक्त फवाका मुझे इश्क है तुम्ही से, श्रीमान आंद्रे राजकुमार जो शहर लेवार्डर में रहता है उन्हीं के पसंद।

श्रीमान आंद्रे राजकुमार जो लेवार्डन में रहता है उन्हीं के लिए स्पेशल ये सॉन्ग भेजता। दोस्तों छोटा सा स्पॉट ब्रेक था, रोनाल्डो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो पुर्तगाल का इंटरनेशनल है वो पुर्तगाल और डेनमार्क से मुकाबला से होने से पहले कल मुकाबला था दोस्तों, लेकिन एक रोज पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो ट्रेनिंग काम छोड़ के चला गया। पता नहीं क्यों चला गया है, लेकिन क्रिस्टियानो ने कहा है कि अपन फैंस से आने वाले दिनों में जरूर खबर करेंगे कि क्या कारण था कि ये फुटबॉल का मैदान छोड़कर चला गया। और स्पोर्ट बरेस्टर

उफन वसेड़ खेला गया दोस्तों, लिताउन 3 अंदोरा 0, अर्जेंटीना 4 बोलिविया 0। कल के बाद है ओबिस्तान 4 और सीरिया 1। आज खेला गया है सुबह साउथ कोरिया 0 वेनेजुएला 0 और मुकाबला कल रहेगा दोस्तों भी तुनिसिया तीखन माली। और ख़ास बात ये है, ये आपसे मैं बताना चाहता हूँ कि कल जब शनिवार है तो इंडिया का फुटबॉल टीम जो है वो ब्रासिलिया से मुकाबला करेगा। और पता नहीं है कि एक खेल किस तरह से होगा, लेकिन अगर मुझे समय रहेगा तो खेल मैं ज़रूर फॉलो करूँगा। आशा है कि आप भी एक खेल जरूर देखेंगे। उसके बाद रसला नामीबिया कनाडा पेरू और फ्रांसिस्ट मेक्सिको से मुकाबला करेगा। और फुटबॉल का मुकाबला हुआ है दोस्तों और होने वाला है, मैं आपसे बताऊंगा। कल के बाद है नेशन लीग का मुकाबला हुआ है और क्रिकलान नीदरलैंड से खेला है। ये खेल ट्वी में एंड हुआ, लेकिन पौस जब हुआ तो उन समय पर क्रिकलान का ट्वी दुर्पेंट था, अनिदान का नल दुर्पेंट। फिर नीकन फेस तक्स मिनट में फंदाइक एक बाल स्कोर किया और नीकन तख तक्स मिनट में रेंडर्स ट्वी खलाइक स्पेल बनाया। और दोस्तों बात यह है कि ट्वी दुर्पेंट, जी हाँ, ट्वी दो दुर्पेंट नीदरलैंड का अफकर हो गया है। पता नहीं कि ये बेट स्पेल था या नहीं, लेकिन दो दुर्पेंट अफकर हो गया है। और स्पोर्ट बरिस्त है

मून और साथ ही साथ उनका जीवन साथी माला आजीब दोनों के वास्ते ये सॉन्ग पेश था। ये आप ही का हैप्पी स्टेशन फाहन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। मुझे छू रही है तेरी गर्म सांसें, क्या बात है दोस्तों। और ये सॉन्ग आशा जी जो रईस वेक में रहती है, आशा एक सौ शाखा ब्लाइफ मार आलते बैले इन स्टीरियो, और आपने भजन मांग किया। मैं आपसे ये कहना चाह रही कल सुबह आप तारक के स्टीरियो में आपके लिए एक भजन जोर पेश होगा। तो आशा जो रईस वेक में रहता है उन्हीं के लिए स्पेशल ये सॉन्ग।

स्वयंवर का सॉन्ग आशा के लिए पेश था, जो रेसक में रहती है आशा युवत हार्तलक पदांत। एक आखिरी सॉन्ग चलेगा ये आइटम में और गाना का बोल है, मुझे एक पल चैन नहीं आए। क्या बात है दोस्तों, कैसे हुआ कि चैन नहीं आता है? कहते जहाँ प्यार मोहब्बत हो जाता है वहाँ कभी कभी भूख नहीं लगता, नींद नहीं आता है, अब चैन भी नहीं आता है।

0: उफ देव, बहुत हो गया, अब बंद भी करो मेरी तारीफ।
1: रहते हो बस तुम रहते हो।
2: अभिजीत एन अलका याग्निक, दोनों की मीठी आवाजों में तुम दिल के धड़कन में रहते हो, क्या बात है दोस्तों। ये आप ही का हैप्पी स्टेशन फाहौन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ। ना इतनी ना तुम इतनी हसीन होती साधना सरगम। एंड वी नो दैट थॉट

तुम इतनी हसीन होते। दोस्तों अभी 6 बजे के बाद मिस्टर जॉनी नंबर 1 का प्रोग्राम आप सुनेंगे और खास करके उनका न्यूज़ बरेक्टर जो है आप जरूर सुनते रहना। फिल्म राज, यह एक पुराना फिल्म राज था और ये नया फिल्म राज का सॉन्ग है अभिजीत एंड अलका।

दोस्तों आप जानते हैं कोलोनियलिज्म, स्लाफनई, इमिग्रांट वगैरह वगैरह जो एक कारोबार जो होता था, तो नीदरलैंड का कोनी जो था उन दिनों में, ये सभी का हाथ में था, ये सभी वेस्ट बनाते थे ये सब कारोबार में। और ये एवन लंग इतना दिन से ये लोग इस रोजगार में उपस्थित थे, फिर भी अब फैसला अब बात बाहर आया है कि लगभग हाफ मिलियार्ड और आयुष जो है उन दिनों में वेंस बनाया है। जब कोनिंग यूलियाना बैठा तब जाकर ये कारोबार जो कहते थे कोलोनियलिज्म का कारोबार जो कोनिंग साइज करते थे जाकर बंद किया। आप जानते हैं बीते हुए साल या दो साल होता है कि कोनिंग अलेक्सेंडर भी माफ़ी मांगा है सभी स्लाफ कारोबार जो हुआ है सभी देशों से। तो और खबर ये रहेगा मैं आपको दूंगा जरूर। अब की बार जो मैं चुन के रखा हो अफसाना बन जाऊंगा, एक न्यू सॉन्ग है दोस्तों, ये एक न्यू सॉन्ग है। और ये सॉन्ग बॉलीवुड सॉन्ग जो है, रोमांटिक बॉलीवुड सॉन्ग जो है, इमरान हसनी या इमरान हसमी की आवाज़ में आप सुनेंगे।

तो दोस्तों सेक्स वर्कर्स, आप जानते हैं डुबलत सरात और खलीन सरात देन हक में दो जगह पर सेक्स शॉप्स है, वहाँ कारोबार होता है, लेकिन खासकर जो डुबलत सरात है वहाँ पर बहुत उफलास होता है। खमीन ने कहा है कि ये उफलास के कारण ये अब फैसला करता है कि आने वाले दिनों में जो राम प्रोस्टिट्यूट सी वहाँ पर होता है उन्हें बंद करने को और सिर्फ खलीन सरात में खुला रहेगा। तो देखा जाए ये बात आगे जाता है या नहीं। नया सॉन्ग जो मैं चुना हूँ वो है मुझे दोस्ती करेंगे, फिल्म का नाम है, ऋतिक रोशन एंड रानी ने काम किया है फिल्म में, सोनू एंड लता दीदी दोनों के आवाज़ में आप सुनेंगे जाने दिल में। ढूंढ निगाहों से, ढूंढ निगाहों से मेरे जाना न करो, ढूंढ निगाहों से मेरे जाना न करो, ऐसा मुझे तरपाया न करो। मिलने को बहुत चाहत है, मिलने को बहुत चाहत है, लेकिन मिलने के बाद जुदाई से डरता हूँ।

अरब से पहले हो तुम। दोस्तों नॉर्थवेक का लेवन हॉर्स होटल, लेवन हॉर्स जो है नॉर्थवेक में, वहाँ पर ब्रांत मैंडेल आया। बात यह है कि तकनीक दिन फैसला किया कि देखा कि कैलर में से धुआं आ रहा है, और बात यह है कि वहाँ पर कैलर में एक मोटर था जो जिन्हें लकाशे था, तो इसी कारण धुआं होटल के अंदर आ रहा था। तो लगभग 400 खास को बाहर निकाला गया है। ये हुआ है नॉर्थवेक का लेवन हॉर्स होटल जो है। दिस अ न्यू सॉन्ग, या का नवा गीत है दोस्तों, नया सॉन्ग है।

20 मिनट रह गया है 6 बजने में 20 मिनट फॉर 6। आप ही का हैप्पी स्टेशन फा हॉर्न हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुने प्रोग्राम गीतों का संगम। सॉन्ग अगेन तेरी यादों में। It is a romantic Hindi love song.

अरे काम जो आपको रिव्यू के सिरे कराना है, जैसे कि खास फरमाइश, जरूरी खबर, मृत्यु समाचार वगैरह वगैरह, कॉन्टैक्ट कीजिए हमारे तक से न्यूज सीफो तक 365 ट्वीट ट्वीट फिर सीफो तार का नंबर है, अपन अखेंडा में लिख कर और रख लीजिए, आज नहीं तो कल आपको जरूर काम आएगा। दोस्तों मौसम तो अच्छा है, वीकेंड भी है, और बहुत से लोग हैं जब वीकेंड होता है तो परिवार घर जाते हैं या किसी पार्टी पे जाते हैं, फरियार ओसो वगैरह वगैरह खाना पीना होता है, वो भी होना चाहिए और होता रहेगा हमेशा। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मुझे कार से जाने के और शराब पीने के, तो एक बॉब को साथ ले लेना। आप जानते हैं जब रेलवे चला जाता है, जब सिपाही रेलवे ले लेता है, तब बहुत मुसीबत, वो लोग सोचते हैं कि बूतल मिलेगा, बूतल के अलावा जो कोर्सेस वगैरह वगैरह आपको करना पड़ेगा, वो सब मुसीबत के बाद समय लगता है दोस्तों, और बहुत मुसीबत रहता है। तो इस बात पे सारा से ध्यान रखना, एक बॉब को मत भूलना, हमेशा साथ ले लेना।

जॉनी नंबर वन आ गया है स्टूडियो में दोस्तों। छह बजे के बाद उसका प्रोग्राम जरूर आप सुनेंगे।

104 बजे से आपका सेवा किया। आशा उम्मीद के साथ कि आप सभी को प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। जो प्रोग्राम को सुना या प्रोग्राम में तार किया उसको मैं बहुत से धन्यवाद या शुक्रिया कहता हूँ। वीकेंड है, आप सभी को प्यार भरा वीकेंड, हैप्पी वीकेंड पेश हो। वाला बृहस्पतिवार सुबह 7 बजे धर्म कर्म फाहन हिंसा रेडियो का सुबह के भजन कार्यक्रम लेकर मैं स्टूडियो में उपस्थित रहूंगा।

अंग में जलते रहे। क्या हुआ ये मुझको, क्या हुआ है? और रोमांटिक सॉन्ग जिस देश में गंगा बहते है।

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जात, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फाहुन के सुनने वालों को हमारा राम राम, नमस्कार, प्यार भरी अदाम, सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। अभी आप लोगों ने द्वारका से एक मस्त भरी प्रोग्राम को सुना, हमारे कोलेगा साथी राजन द्वारका से। दोस्तों यहां से हम प्रोग्राम को ओवर लेते हैं 6 से 7 बजे लेक सूरीनामी न्यूज, उसके बाद में कुछ मिली जुली गीत आपको हम सुनाएंगे और तार करने के लिए आपको भी मौका मिलेगा एक गीत मांगने को, ये आपको हम बता देते हैं। और आज ही शुक्रवार फ्राइडे 8 अक्टूबर हो चुका है, घड़ी की ओर देखा जाए तो 6 मिनट ओवर सेस हो चुका है। इस वक्त हम लाइव रेडियो फोन माध्यम से अपना प्रोग्राम को प्रस्तुत करते हैं।

एक ही दम चलते हैं और कहां चलते हैं, सूरीनाम की ओर चलते हैं हमारे दोस्तों, हमारे यारों।

हमारे यारो आपको हम बता देते हैं, श्री नाम के तु जाने से सरवन बरा जोर देशवा छोड़ के भगे भाई फर प्लिक किंतु वांछित हो रहा है। एकर बारे में श्री नाम का जो मिनिस्टर है वो मिसी काबा बरा सौरख माख करे है, बोले सिस्टर लोन जितना फर प्लिक केंद्र ने देशवा छोड़ के सब मंग बैठा लांत पे जाए कमाए उमदा सदार फलिता करेग। अतः वास अनरस्ट इन हेट land Suriname wat betreft over de verpleegkundigen die massaal het land willen weggaan. Abakinja Misikawa wolle nog steeds ontslag aanvragen verpleegkundigen, maar grote rust om weg te gaan is iets afgenomen. Wolle betaksen van ontslag lewe verpleegkunde, maar wolle toch wolle ter is rust hega. Bole he, i Misikawa Andri, Misikawa minister van Volksgezondheid heetkeer. Bole he ga ontslagbrieven. Er worden nog ontslagbrieven getekend. Maar we moeten wel zeggen dat het drastisch is afgenomen. Omdat ik denk dat de mensen inderdaad de kat uit de boom kijken. Om te kijken wat er gaat gebeuren. Bole, ik heb het gevoel dat de mensen enigszins blij zijn. En in ieder geval weer beginnen te zien dat het een... perfecties is, waardoor die grote rust om weg te gaan iets is afgenomen. Toen Misikawa bole op een miloon, door verplicht tillen bole ons op deekjukkel hega, a bole agore he, ki hem jai ki na jai bole financiële herwaardering sap milega, zorgmedewerkers ke bole gestalde krijgt, terwijl de regering ook bezig is te kijken hoe de mensen geholpen kunnen worden aan betere en goedkopere huisvesting, je kan gherdo aan milse ke he, te zoeken waar ke bole खेत के कागज भी पैसे GBW-deze uitreiken ze. Als regering zijn we bezig integraal te kijken. Dus er is wat perspectief. We starten in derde week oktober met training van 175 verpleegkundigen in samenwerking met Nederland. Om ze dan binnen een jaar klaar te stromen tot gespecialiseerde verpleegkundigen. Want die zijn de mensen die het meest zijn weggegaan. Aldus, Misi Kaba, bole Guyana, ke hoor jij, bhaiya. To Guyana me batawe, ego admi aanklag voor ontvoering van twee Surinamers. Kes hem ontvoerker is, Guyana ke sipahi bole he. Bole ego मॉल है और मुर्फी बोले को इनवोनर हैगा फी ही लांसिया ऑन द ईस्ट अने गोस डेमरारा के बोले आंखक्लाखो के सबन करी से कि दुई को सुरिनाम के अनमी के ऑनफूर करी से मुर्फी इस डोंडरडा फोर खलाइड बाय द फोर्थ अने फन वेली अने वेलिंगटन और बोले अने कोर्ट में bole en op borg zal vrijgelaten. Murphy, de broer van beruchte Mark Damon, Diamond Cromwell, bole verscheen virtueel voor magistraat Sharif Sharifa Parks. Bole Murphy wordt ervan beschuldigd 28-jarige Sigello van Dalen en de 29-jarige Derli Bond op 29 augustus in de Rochanoil West Kous Verbriesmith te hebben ontvoerd. Om daarna lekker nieuws en paradis dus toe. Kie mij londen ook ik hoge heel erg kon ke. Is heb ke ontvoerd kerlege hega. Bole ik er bare me wat awe hega. Murphy ke go alibi he. Advocaat ook bole hega tegen over de rechtbank. Kie ook er cliënt betreffende moment tussen Houston en Johnston bevond. Volgende advocaat hebben de onderzoeker geen stappen ondernomen om de personen met wie Murphy naar eigen zeggen was te horen. To ik die mila ontvoer bij bij ik mila pakken is op borg ook vrij kan is 19 tarik september ke bekend bij le dalen en won laatst wel he 28 augustus ke op bole is op een gare goti uta fit se nikeri rechte nikeri gel ha en 29 augustus op ke laatste sambandige se klara sluis lage nikeri me uit de auto stappen om per boot naar Guyana te reizen. Klara se hoe sap jaar Guyana or in die Murphy schuldig wordt bevonden aan de ontvoering met het doel de mannen heimelijk en onrechtmatig van hun vrijheid te beroven, kan hij volgens Guyana veroordeeld tot een boete van maximaal $750,000 en een gevangenisstraf van maximaal 5 bariskeu jahal 5 sekehe jab oke 7 schuldig voel paiga tap
ऐसे मानचित्र सोना के केती नानी सुरीनाम में आदमी लोन बड़ी मोटा मोटा सोना के केती पहरे है, मोटा मोटा सोना के केती पहरे भैया, और वही तो चोर बढ़ावे है। तहिया बतावे हौदन हाल्स कहते वेट बे खवापन द बरूफन आंद खुद सरख वेख में एक मोटा केती पहन ला रहे गो आदमी भैया। तू जाने उस पांच छो गो मोटा मोटा अंगूठी पहन ले रे केती मोटा मोटा आर बांग पहन ले रे भैया, ऊपर से लींगा भी टांगे रहे है। तो तू चोर ना बुलावे भैया, तो यहाँ बतावे है खुद सरख में भाई एगो खवापंद बरूफिंग भैल है। और बोले हैगा दुई गो आदमी गई है पिस्तौल लेके, और बोले हैगा एकर केती घींच के अदमिया के चल गए है। ऊपर से पिस्तौल से लॉस स्कॉट दागी से गा एगो तेउता फेस लेके अदमियन चोरवन भग गए है। और बोले है स्लाख तो फर लिबे द बरूफिंग स्नेह वन ऑन द हाउस, द पुलिस वेर इन खस्काकन हीव द साक इन अंडरसूक और लेके भग गए भैया। तो चोर बोले यो गटही में उतना मोटा मोटा केती पहर के एक तो सुरीनाम में तुलन जानो भैया, कौन रकम हुआ पे रूफ वे हम जाए भैया लंगा डाम की ओर जेके से बोले मिस्टर पे चांदी शव वे बोनिंग एन खराब मशीन इन ब्रांड आने मिस्टर पे चांदी हुए आगे लगल भैया लंगा डाम पे जहाँ पे गो घर पूरा जर गए है और एगो पॉकलाइन भी जर गए भैया। बतावे एगो बनी रे वोनिंग रहा दो अंदर दाख के चांदी शव वेख ने मरो होंदे सेफ पे। बोले हैगा हुआ घर में आग लगल है, और बोले हैगा ब्रांडवेयर सब हम बुलाई से मैं ब्लूस वर्क से ऑन द ओर सा फन ब्रांड अबे पता ना है कैसे अज्ञा लगा ले लेकिन वो घर जर गए और एक लेको पकलाइन खड़ा रहा ओ जर गए है। बताई गई हैगा और पुलिस वेट इनके स्काकल और एक बारे में नतीलोग अब ऑन द सुखवे कि अज्ञा कैसे लगा ले भाई। भैया सेत रैम, बोले रैम करी से गया ना जैसे ओतो के रैम पे चढ़ जा बाना के बकुआ के बारे में भैया गया ना सेत रैम। अब सुरीनाम से बनाने उन से भूरन है बन खनुक बोले गया ना के बोले अब तू यहाँ पे ना पटाइए पर बाना ओकर बाना के दोसु पे लिखल है बनाना स्वीटी सुरीनाम मेड इन सुरीनाम के दोसु में से बना एक्सपोर्ट करता गया ना। गया ना बोले अब तू ना पटाइए, बोले हमार खेती ये निया खनूख बाना बोवे है ततोर बाना हमें नो उड़खना अपन बाना तुलुन अपन घरे धल्ले रहो सरनाम ये बात गया ना बोले है। गया ना वेलखीन बनाने ऐश्री नाम मिर्तुला तो सोलांग द एकन बुरन फॉल दून द प्रोड्यूसरन ओम ओम द बेनलान से फ्राक तो फॉल दून एक बारे में मिनिस्टर जो लान बाउ के है सन्ना अन गयाना के ओकर नाम बा सिल्फिकर मुस्तफा और द्राख दे इसे इंपोर्ट स्टॉप करे के ना दत है सिनियाल करे के सुरीनाम से बनाना हेडलान बिनन क्वामन। अब बोले अब बाना ओवर बोउडक हो जाए सुरीनाम में भैया गयाना यात्रा गयाना स्टॉप कर दे इसे। बोले हैगा खनुक बनाना हेवन ऑन द मार्क बिफोर आदन ई बात मिनिस्टर बोले हैगा गयाना के। और बोले हैगा गयाना ना दृक्त किस्त फॉर बस कैरमिंग फन एकर बनाने प्रोडक्शी। मुस्तफा बोले हैगा बोले बस केक थेटलान मोमेंटेल बोले हम लोग फलून दे हैगा बाना। और बोले हैगा इंपोर्ट ऑफिशियल इंपोर्ट जो सुरीनाम से आवत रहा है सो हेट एट फॉर मेर क्लाक्टन हैव ओफांग दर बनाने ऐ सुरीनाम खुनाइंस मा तरह कोमन। बोले अब बेलेक आवे है मुस्तफा मार्क दैलक दैट इट बसलाइट pas binnen het landbouwbeleid van Guyana zodra lokale producenten voldoende van een bepaald landbouwproduct kunnen leveren. Natuurlijk de Oesep naar importeer kari. Adjonet mi Guyana ke. Hij ga Oesep apre bana boe bhaiya. Te bole sa naam ke bana hem ka kare. Bole tulo apel sa bana. Apel sa naam me dhalle rayo. Ta hamara khetier bichara jor bana export karat raha. Apo ka chahi purberi kare ke. Apa banana an afset jo nahi ga kahin aur kare ke bhaiya. Lokal bichyo ke export स्पोर्ट करियो एक बारे में बताई गई है। तरी हम जाइए नीदरलैंड को भैया सुरीनाम से और खानी सासी वेल न्यू एक्सी सीना ऑन द सु कोनिंग्स है सलाम के मां आदमी मांगे हैगा एक्सी भैया कोनिंग विलम अलेक्जेंडर कान कंक्रीट एक्सी ऑन द नोम न्यू डाइलक इज वेलके रोल हैट हैज ओरायन नासाउ हीव गेस्पील इन कोलोनियल गेस्किनेस फॉर सेट द सिगमेंट ऑफ हॉर्स फन अफ्रीकन कल्चरू
Bolehe, dat is een organisatie die in Suriname de Afro-Surinaamse erfenis en cultuur bewaakt, beschermt en voorzet. Abolehega, Alexander Ketjahinkereke, koning nam de 5 onafhankelijke boeken vrijdag in ontvangst. Hij kwam de lezen, zegt Staphorst. Bolehega, Bolehega, in de december 2025 bood de koning Paramaribo excuses aan voor een slavernij verleden. Abolehega, nachts voorzitter Bolehe. Hij gaat concrete stappen moeten zetten met 21 andere organisaties. Ontwikkelingsprogramma van de nazaten van de slavernij verleden. Toe je baat, hè, bhaiya. Ja, Nederland kan doen, Surinaamse organisatie. Bolin en koning kan actie ondernemen, kreeg. Toe je ze baat, hè, dus toe aan kan hem. बता देते हैं अब देखो भैया एगो आदमी के सब हाथ बुई करी से सूरीनाम देश की ओर फिर हम जाएला ई अपलेखतर रहा भाई अपलेखतेंग रहा हाँ अपलेखतर ही करत रहा और 2 अक्टूबर के न्यूज से ई का करत रहा फ्रॉडेर करत रहा भैया तो सूरीनाम के फ्रॉड अफडेलिंग के अपलेखतेंग के इन खस्क्रिफ्ट इरमिया ओतो बेचत रहा भैया कागज फागज सब उल्टा सीधा बनाई के अरे के अब पकड़ी से सिपाही एगो बेएस हैगा हाथ फन एफएम एमएफ एगो मार्क एक्स आंखस्का फॉर $3,300 हर फुर्ते verschoonde, verschillende mankementen, maar bij de aankoop leken alle documenten in orde. De reparaties verkocht BS de auto door aan een klant. Oude de verkeerstechnische dienst van de politie. Keiders blijft kegele onderzoeker het gotoe beslag klise. Gelegd vanwege een openstaande rekening bij carcenter Opper Jeristi. Waar de auto eerder was verkocht, uit de politie onderzocht, zou zijn gebleken dat MS en BS een valse of vervalse KKF-uittreksel opnam van Carcenter en van Opper Jeriti had overgehandigd. Na overleg met de OM zijn ze in verzekering gesteld. Maar ja, deze oplichterijker het raam. Dus het bedrijf KKF, kagetje niet karke. En Opper is een fraude rode karke. Otoa beetje, otoa met 1000 rode mankement raam. Toe je ze bebaat in Suriname deske. Jo aamko hum bata dete he. Hamare pyare pyare janta. हम जाए भैया हम जाएला अमेरिका के ओर खेसेफा हाल 100 मिलियन फतन ओली एंड डीजल आउट नोट फॉर आर फ्रॉम द ड्रेगमेंट ट्रिम खेसेफा लंदन जो बा आप लोग जानो है ओमा बोले उसे 100 मिलियन बैरल तेल डीजल निकारी से का नोट फॉर आर फ्रॉम वे स्टेक इन द ब्रांस्टॉफ प्राइसन जो तेल इतना महंगा हुए है तो इसे अपन नोट फॉर आर में से निकारी से खेसे फलंदन और बतावे इस्ट 20 दागन इस्ट 20 रोजों है गा बोले फोराल डीजल बोले खेसे फलंदन जो कनाडा डच्चलैंड फ्रांकरिक इटालिया जापान और अरोका बोले फरेनिक्ड कोनेक्रेक एंड द फेयर्स en hun partner staat in een verklaring voor de landengroep G7 verder werden. En laat verder weten geen exportbeperking op energie tussen de 7 landen te willen invoeren. Trumbolega duidelijk over, zegt de Franse president en G7-voorzitter Emmanuel Macron. De G7 landen met bijna hem in Nederland ke naam te kohuna milel he. Nederland te expert he bijna apart eigen janta ke khali balasting maare ke bijna. To lo jano he de box 3 ke baare me ketra bhail he. Apu sab mange he jo nan mi tari mani paisa. Apa spaar kere okkar gatai dabai se bijna rakhe ringwa. Au e sab chij ke jo hum log ke tel etra manga hoe he. Ekar baare me kuch na kere he ga. Europese commissie heeft verbod op export van diesel eerder op de dag volledig van de hand gewezen, zijn woordvoerder van de commissie vrijdag. Iran oorlog verstoort oliemarkt, bhaiya. Iran ke oorlog jo nu verstoort kare hai. Iran mein jo oorlog hue hega, aadha barish hui hega. Bole flinke verstoring van de oliemarkt. Prijzen zijn gevolgd bij op een snelle uitbreken van de oorlog van landen onder leiding van Internationale Energieagentschap.
al 400 miljoen vatten vrij Trump heeft geklaagd dat Europa daarbij te traag te werk gaat. To jebaan to sehibaan te Trump ke bhaai. Traag Europa ke kaam apa Nederland twee ke boli lak ke traag hai bhaiya. O khali jane hai ga tweede kamer me. O khali een probleem banawe apan eigen janta ke. Gatai dabawe bhaiya hiya farhoke hua farhoke. Aur jai ke का बोले हैगा कुछ ठीक से ना करे हैं अभी आप लोग के बताएंगे बॉक्स 3 के नवा रिकल्स जोन हैगा नवा रिकल्स जोन संबंध तो इधर कॉमर्स में बनाई सेगा कि ई संबंध बॉक्स 3 वा के रिकल्स वन कैसे हैगा अल्गमीन फॉरवर्डन फॉर द बॉक्स 3 रिकल्स मेंसे दैट इज हील हील हील एरर एंड दैट सेंस ए बेसिक मेथड वर्कन ये बात है भैया फ्रेश हेज फेस खुद यहाँ बतावे हैं बॉक्स 3 के बारे में जो आप लोग को हम यहाँ पे अभी बताएंगे कि ई रिकलिंगवा का हैगा बॉक्स 3 रिकलिंग जो नवा आयल हैगा तो दोस्तों ये सब बात जो है आपको हम सिर्फ रेडियो फाहुन के माध्यम से बताते हैं NOS betaalde vrij vragen over de box 3. Hoe kon het zo'n probleem worden en wat is nu de oplossing? Iemand heeft een aanplooi die nog meer persoon heeft. Jetra en mijn box 3 is ook een baar. Aanplooi kunnen betaalde nieuwe coalitieplan. Belasting en verbogen van box 3. Belangrijkste ontwerp van algemene financiële beschouwing. Bole wat box 3 kontje heeft. Kon is een probleem? Kunnen we worden belangrijkste vragen op een rij to aap log hem chota roop pe hier bataenge box 3 konchi oma gire wat fall daar ook alweer onder box 3 ke niche konchi gire hai heb je weinig spaargeld geen beleggingen en heb je geen tweede huis dan zal je vermoedelijk helemaal niks met box 3 te maken hebben dat ook een dusra ghar na hai तो कमती पैसा स्पार कर ले बाटे बलेख ना कर ले बाटे तो दू बॉक्स 3 में ना आइए इन दर खफाल बता लिए सोल द मेस्टर नी दला अलीन बलास्टिंग इन बॉक्स 1 ओ खाली बॉक्स 1 के पैसा भरी जे तो के घर द्वार तो ई दवाल कीनल ना है और बोले अब लोन ऑफ एट केयर इन दिस बॉक्स लीवर स्टट्स केस Een verre weg en meest op zo'n 90% van alle inkomsten belasting. Box 2 komt je bij jou. Box 2 kan matlab hij gaan. Bolle hij gaan. Mensen ke je kego bedrijven. Je ke dukaan en bedrijven. Oesap en mij he. Besloten van vennootschap ke bare me. Schatting 500.000 en mij ke baat he. In box 3 zitten zo'n 2,5 miljoen mensen. Jon box 3 me ba. Or box 2 me jon be ba 500.000 en mij he. Daarin betaal je belasting voor. Rendement op spaargeld aandelen of een striptomunten en ook een tweede woning. Toch een tweede woning bij de kabelen hega, aandelen hega, spaargeld, rendementen, het ook een bedrijf. Toch maar 500.000 en mieke, willen in box 3 zitten, zo in 2,5. Opdelen, waarom moet box 3 op de schop zijn? Kaheke. Bolle de politiek kon niets anders na een uitspraak van de Hoge Raad in 2021 met Hoge Raad Kardesega. Ka bolle hega, uitspraak kreeg ze box 3 ke baare me janta. To okker baare me betaal de Hoge Raad konchi bolle raha. Hoge Raad bolle straftax in strijd met de wet. Overheid had geen gebruik mogen maken van een fictief rendement bij de vermogensrendementheffing. Ook wel spaartax genoemd. Hoge Raad oordeel Kalera in de jaren 17 en 18 mee. In strijd was met de wet. Daardoor is de belasting die de aanslagen van de belastingbetalers die bezwaar maakten tegen de fictieve rendement opnieuw beoordelen op pas van het werkelijke rendement. Toen iemand al lamba chowda het dus toch in aanplok ook goed parna padega. Die raad, de Hoge Raad 2021 mee uitsprak er is zeker politiek keker waren mee, maar die hamlun hier 2026 mee hoe jullie abbe is het kuch karisna hè, ab is het uiteindelijk moeten ze wat gaan doen, ah hamlok ke vanaf 2021 ze doorom hamlok ke dhakelle ba box 3 of box 2 ke baren mee.
te betekenen die oordelen dat het geschatte rendement waarmee Belastingdienst rekende niet eerlijk was. IBAN wilde hoger aan. Vooraan spaarders waren daarvan de dupe. Zij betaalden vaak meer belasting dan dat zij aan de rente van een bank kregen. Maar leer jij toch een paisa, hega, bank mee. Een bank met een paar weer 2%, 1.5%. De 1.5% zegt ja dat door spaargeld ook toch een belasting verrekt. Of verder Rutte bole tulo paisa spaar koro jono usap ke dewa au paisa jai ka bole hega dusar ke help pe. Om aan de rechtelijke uitspraak te voldoen, zet het kabinet Rutte 3 keer waarop snel tijdelijk manier of aan de belastingberekening op. Dit tot op de dag vandaag nog geld. Maar ook dit systeem kent een groot nadeel. Mensen met hoge rendementen betalen nu relatief weinig belasting. Op de schatkist krijgt daardoor jaarlijks 3 miljard euro minder binnen de eerste. Ieder jaar dat er geen nieuwe plan komt, lekken de miljarden weg. Om die reden voelen politieke partijen tijdsdruk op snel met een alternatief te komen. Dat is de kabinet Rutte 5 schoof en jetten aangewerkt. Op via jetten kan je hier per kamer krijgen. Oor betekent je hega coalitiepartijen D66, VVD, CDA, John Asset coalitie hega zijn er over eens dat er op de lange termijn van een vermogen winstbelasting moet komen. Maar er is een technisch probleem in mijn eigen minister van Financiën bolle hega 2030. Vanaf 2030, zelf 2032, de mogelijke belastingdienst op banken hiervan hun systemen moeten aanpassen, mensen. Dat hebben ze gezegd. Op betekent je hega onrust bij bedrijven en beleggers. Deze tussenoplossing leidde tot zoveel onrust bij bedrijven en beleggers dat minister Heijn Financiën en VVD 2 weken later alweer zei dat de wet terug naar de tekentafel moest. Vervolgens ontstond er een groot verschil van mening tussen coalitiepartijen over wat er dan wel gebeurd moest gebeuren. De doelstof behoed lemba chowra likele aaploeke hem koet 2, box 2 of box 3 keer waar hem met ade. Abbe definitief koetje na hè. Maar de situatie rond box 3 is nu vrij chaotisch, zeg maar. Omdat de Tweede Kamer al met de vermogen aan was in box 3 wet heeft ingestemd, ligt dit die nu bij de Eerste Kamer als het kabinet een meerderheid heeft voor een nieuwe plan. Moet dat via een wetswijziging weer langs de Tweede Kamer. Pas daarna kan de Eerste Kamer erover gaan stemmen, mensen. Toch een boel tulke koets bataai die ik erbij mee. हमारी जनता ये बलास्टिंग जोन हैगा एमा नीदरलैंड बहुत बढ़िया है मां बोलिए हम लोग के तेल और सस्ता करे के दार इस ओनसे लैंड नीदरलैंड हील एरख अख्तर में से तेल हिया हम लोग के इतना महंगा हो गए है कोप क्रैक फॉर स्टीयरिंग इस वाला सब कुछ यहां दुकान में महंगा हो गए मार एयरवर्ड नाम लग हील वेनर iets gedaan door onze regerings. En ze zijn alleen bezig. Hoe kan ik onze eigen mensen in het land belasting gaan innen. Zodat hun namelijk door gaan met hun regering. Dan moet ik in Nederland gebaren maar plukken. Maar dat Simons Kabole 2017. 27 moeten wij keuzes maken. Kon keuze maken. Kerwaye Jennifer Geerling Simon Bolle president. Bolle 30 september. Bolle benadruk kari se kaki 2027. Mijn sepke tja hij keuze kareke. Maar we moeten blijven maken vanwege de beperkte financiële ruimte. Totale overheidkenskomst in 2027. Mee. Oma hij gaat 70,1 miljard SRD. Terwijl hem lukke uitgaven hij gaat 80,9 miljard. Dus ook een wat 10 miljard tekort hega. Daarmee komt het genaamde begrotingstekort op 10,8 miljard. Oftewel 4% van het bruto binnenlandse product. Je kan zeggen, total basambole BBP betekent bruto binnenlandse product. Doen binnenlandse producten ook erbare mee. Inkomen erbare mee. Dus Suriname 10,8 miljard tekort hega. Totaal ofwel 4% van de BBP mensen. Bolle Simons presenteerde de cijfer tijdens de jaarreden van 2027 mee. Totale uitgaven heeft 25,4 miljard bestemd voor operationele uitgaven van 55,6 miljard. Bolle voor de uitvoering van de programma's. Toen hier heb je dus आपको और पढ़ना है बखरोटिंग के बारे में तो आप लोग खुद जाइए और पढ़िए आपको हम छोटा रूप में यहां बता देते हैं कि श्रीनाम
komt tekort met de begroting van 2027. En ze komen ze een kort van 10,8 miljard Surinaamse dollar. Janta, ik nieuws aankoop, breaking news en betaai. Hey, jo aans je nieuws pura dunia me halchal mara deze. Ek vliegtuig, ha, ek vliegtuig Abu Dhabi se ulele bhaiya. Ook na fly Dubai se, fly Dubai se. Aur u vliegtuig me, u vliegtuig jaat raha Israel me. Ha, janta, Israel me u vliegtuig jaat raha. Jema 150 ko khali Israel ke admir ha. उतरे में भैया फ्लिकटाइक उड़े जा है फ्लाई दुबई अब प्लेन उतरे में नीचे गिरे लगल है और कॉकपिट तू जाने जहां पे पिलोट लोग बैठे हैं कॉकपिट भैया उताला रहा और ओमा से चिल्लहट मचल है एको लड़का सुनी से और चिल्लहट मचल है तो आदमी ये दौड़ल उतरे में कवाड़ी कॉकपिट के खुल गए है और जब भीतर में गईल हैगा आदमी लोग जो पचशीर से चार गो हेल्थ भैया और गईल है तो देखे एगो पिलोट खून में लथपथ है एगो पिलोट और वो पिलोट के छुरी लगल है चारों बगल खाली खून और एक वो पिलोट वो खाली मांगे हैगा प्लेन वार्स स्टार्ट करे मतलब गिरावे मांगे क्रैश करे मांगे है तो जो चार गो आदमी भैया हेल्थ रहा पकड़ के एक वो आदमिया के पकड़ के बानी से और दुई गो पिलोट जो प्लेन वा में रहा उस सब जाए के फ्लिकते एक वो मोई से अबू धाबी में जाए के उतार दी से भैया और पता चलल है जो हम लोग जो पिलोट वा खून में लपथत रहा वो हमारा एक इंडिया के पिलोट है जेकर नाम है स्मिथ स्मिथ मचर हिंदी के इंडिया के है और वो जाए के सबके जान बचाई भैया की कवाड़ी खोल दी से नहीं वो प्लेन नेक्स्ट दौर तो हो जाए और ओकर मारे में क्रॉप दबा दी से स्मिथ जाए के कि प्लेन वा सबन हाईजैक कर मतलब कि हाईजैक कर ली से और इसराइल जाए के अपन खफेक फ्लिकते एक भी उड़ाई से प्लेन वा के लुन तुकल ले रहा भैया मजे प्लेन फिन मोई से चले लगल तो रिस्टक भैले ब्लैक भैले के जोन एको को फिरो उतरा उ को प्लो जो रहा उ मांगत रहा प्लेन वा के ने स्टार्ट करे है वास एन टेररिस्ट मेंस मार फन फ्लिकते है इज एन को पिलोट फन ओमान एको देश से वहां पर वहां के था और उ मांगत रहा जाए के प्लेन वा गिरावे एक बारे में नरेंद्र मोदी नेतालियाओ और का बोले हैं हमारे यानी कि अमेरिका के ट्रम्प जोन है इंडिया के बहुत सबासी देश से सेल प्रीमियर नरेंद्र मोदी और जाए के स्मिथ ने मच्छंदर के हिंदुस्तानी पिलोट जोन इंडिया के ओके अस्पताल में बेल करी से और बताई से कितना जनता के तू आज जान बचे ले बाटे हमारा बोले हिंदुस्तानी है हिंदुस्तानी जैसे फहून है फॉरेनर द हिंदुस्तान से रेडियो ऐसे है गा हिंदुस्तानी रेडियो ऐसे इंडिया के पिलोट जन है उसका नाम है स्मिथ मचर और ये जाकर उतरा आदमी के जान बचाई से भैया तो आज वो पूरा दुनिया में एक सब गुन गावे है और वो बोले हैगा एक प्रोबेर्ड में लीफन तरह दर मार वेस्ट ओक दैट इन नीट ऑल दी मेंशन कौन लात स्टेफन ऑल दिस ने मचर बोले है ओम स्क्रीफ तो फूलन दैट फ्लिक टेक ऑन डाइक फ्लिक नाम ही ना बसलोत है गोन द डोर फ्रॉम द कॉकपिट ओपनन बोले एक वर्क तो ओक geslagen बोले मार दी द डोर ओपन इदरिन kwam naar binnen. Pas als hier kwam de cockpit binnen, want overmeesterde de co-piloot en leidde het vliegtuig om een crash te voorkomen. Het toestel maakte een noodlanding in Saudische Tabuk. Het voorval in de Fly Dubai toestel dat onderweg was naar Tel Aviv wordt onderzocht. Volgens Israël wilde de cockpiloot het vliegtuig laten neerstonden. Or ze bolle hij gaan 9-11 mee. En toen een Amerikaan bijna september mee ooit een ziet bolle voorkomen kan deze ga of aantje admi John hè John Indiaanse piloot hè Smith ik een naam ba Smith
Macher woensdag gewond geraakt in een aanval van een cockpitpiloot op een Fly Dubai vlucht, heeft gezegd dat hij passagiers wilde beschermen. Hij zei dit tijdens een videogesprek met de Indiaanse premier Narendra Modi. To aapko ye achha kahani aapko hum jarur batate hain. Aur hamara Suriname ke jo racist bhaiya, racist hai ek ingi hai aur jai ke krakang bole ala kuli yampani isi musgwe. भैया अपने इंगी कौनची बनाई से भैया बेनलांत में आंतल झलवा झूले हैं और बोले कूली मुस्गवे ते इतना रसिस्सी से अस्पराक देश में हम लोग के सुरिनाम में हुए हैं और हम लोग के रखेरिंग और रखेरिंग जो है एकर का बोले हैगा जेनिफर सिमोन के और ग्रेगरी रिसलान के अपन मुंह न खोले हैं. हमारा जो हिंदुस्तानी है देना का फोर्सेतर जो है अधीन है परमेश्वर है और हिंदुस्तानी है कोई के मुंह न खोले है कि हमारा हिंदुस्तानी के ऐसन ऐसन बात जाए के सबन बोले वो कफरी भी भाई को दुकान का आगे बोले रहा आला कुली मुझे ना इंडिया तो ये सब बांध के इतना रसिस्ट ऐश्वर्या का हमारे देश में हुए हैं लेकिन कोई मुंह ना खोले हैं और जाए के एकर बारे में खाली सोशल मीडिया पे फेसबुक पे सबन उन्हें गरियावे हैं. मैं एक को अक्सी हुआ कर रखे रहे श्रीनाम में ना लेवे और हमारा भारत देश में देखिए भैया आज दुनिया के एक चिन्ह बन गए हैं जो ये आदमी करी से फेरल पे आज सबको होकर गुण गावे है कि इतना आदमी को जान बचाई से अपन जान खतरे में डाल के. तो दोस्तों हम चलते हैं आप लोग को एक गीत सुनाएंगे तो गीत के बाद में अभी हम वापस तुरंत आ जाएंगे.

और एक रिमिक्स सॉन्ग था छू कर मेरे मन को पिया तूने और क्या क्या क्या इशारा के वांछित हो रहा है।

लंग के धुआने धुआने कर भैया पाई से कौची बंदर के जीप मिलल भाई एक मिला लावत रहा और जाने ओके बोले ब्रल आप जाने सुरीनाम में जइयो जब बरखा बरसे है तो जंगलिया में सुना बाबुल हम लोग बोली तो मो ब्रल आप है भैया बरखा का चिल्ला तो नीदरलैंड के धुआने धुआने को पकेट पाई से भैया जहाँ ब्रल आप के बोले यहाँ बोले हैगा नीदरलैंड से धुआने धुआनीज है बोले इन पॉकेट में तकन ब्लादरन एर अंदर और खानिस मटेरियलन तुए तुम बिंदरन फन अन खुयाना ब्रिल आप ओके बोले अलुआता माकोनेली आन खत्रोफन सेंडिंग वास

Maar je hebt hier kon je bij jou voor het binnenbrengen van een beschermde dierlijke delen vergunning vereist. Die ontbrak in dit geval waarna twee tongbeenderen in beslag zijn genomen. De kono jeep post kalera bhaiya jeep post Brazilian ke sab pakadi se bhaiya Suriname bhaiya 22,515 Amerikaanse dollar apan juta me lukwai ke airport lagera bhaiya aur leke oke mangatra Brazil jaye तो ओके पकड़ी इसे बोले तू कहे पैसा हुआ दल रे बोले ओमदा स्कूल तू एक दे हमार पैसा बसला कर ले रहा बोलो एक मारे लुकवाई बाटी है फरकलार दे बोले हम ना जाने कि $10,000 माखे में ले के जाई के बोले हम जंगल में सोना खोदे ले बोले वही पैसा बोले हम ले के जाईला पिस्टल अब यात्रा फिया खुयाना ना ब्राजीलिए तो फरतरेकन और बताए दे ब्राजीलियाanse verdachte internationale luchthaven aangehouden toen hij op de punt stond via Guyana naar Brazilië te vertrekken. Bolle hebben werd in de schoenen die bedrag gevonden. Volgende verdachte ging het om de verdiensten als goudsmid. Zo'n aanraha bolle bhaiya. Oh bolle hem neen ki $10,000 mag le jaike. De man verklaarde het geld in schoenen te hebben verborgen. Omdat hij bolle eerder in Guyana door de politie zou zijn beroofd. En vreesde dat dit opnieuw zou gebeuren. Ki Guyana bolle skoutu bolle ook een beroofd kortje kon la paiswa ke. Bolle hoe ik mane paiswa hoa lukwaai rehi. Na overleg van een officier van jullie werd de verdachte in verzekering gesteld. De zaak is later op verzoek van de verdachte buiten proces afgehandeld, waarna hij in vrijheid werd gesteld. तो गयाना के सिपाही के भी विश्वास ना भैया ये हूँ सब बात अब देखो गयाना में एक छह बरिस के लड़का भैया सेस यार रखा यंग दूर खकाप इन गयाना चार बरिस के लड़का के कटलीस के काट के मांडल ने बाटे ये बात हुए परिका में खुद गए ले सात रोज वहाँ रहे ले भैया सेस यार रखा यंग वहाँ परिका में सबन काट दी से गयाना के बात हुए हैगा बोले हैगा एक बारे में बोले को चिनुआ है भैया चिनुआ काट इसे लड़कवा के चिनुआ पकड़ के बंद करी से और बोले हैगा आइडेंटिफाइड एज द इवन इन चाइनीज इफेंग एन काओ है स्लाक्टोफर चिनुए के लड़का रहा फॉल्स द पुलिसी फॉर अ ब्यूरलैंड सुरिनाम वेयर द यंगन ऑफ क्वाट ओवरफील टोटल लोकल टाइड इंसिडेंट में द verdachte इन सेन नेक gekaapt ook al jam kaart is ja de jongen werd mispoed naar de kinderregionaal hospitaal gebracht bij de aankomst constateerde een arts dat hij race was overleden लड़का के गटाई तू कटिए भैया तू लड़का भला कैसे बचेगा नानी बड़ी दुख के बात है सेस यार किन तो ये सब एक कंटेनर भैया जाकोनेसन के बातचीत हुए सिकन है से सनाम के कंटेनर में वेंदी से हेल्प खुदरन अंदर वेग नार जाकोनेसे हैस इन परमारीबो स्टेक्टिंग फ्रिंडन जो नीदरलैंड में हैगा और स्टेक्टिंग स्वीटी मारीन एक बड़का कंटेनर में हेल्प खुदर से भर के और सुरीनाम पठाई सेगा और सुरीनाम में आई गए है बलांग रहे के डील फॉर द लैंडिंग इज बस्टेम फॉर जाकोनेसन हैस जेमा बहंदल ताफल है ऑपरासी ताफल है मोनिटोरन है और दूसरा मेजी से मटेरियल है गस्टेक्टिंग स्वीटी मारीन रिक्स स्पेसिफिक ऑफ अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम जाकोनेसन हाउस और बोले हैगा एंड ही दारो में ग्रो डील फॉर द मेजी से खुद फॉर द सिकन है फरसामल और बताई गई है और होएगा और ऑर्गेनाइजेशन से बोले वो सब जाएगा अने हॉस्पिस अलमेरे एंड कैटरीना कमिटे uit Uithoven से गईल है चीजों daarmee is de container gevuld met brede verzameling van materialen die in Suriname gebruikt kunnen worden तो बहुत अच्छा बात है कि यहां से मेजी से सीनन हुआ जा है जो हमारा जनता हुआ पे जो हिंसी को नहीं उसे हेल्प पाई सकेगा द हेल्प एक्शन क्रेक बिन कोर्ट अन वॉलीडर vervolg 13 oktober ke opnieuw container geladen met loos aan de Passa Wijse Hoogweg 1 in Tiel. तो उत्तील से जाई हमारी जनता अब देखो यहाँ बताए गए हैं ओली प्रेसन डालन तो अंदर तो $100 और यहाँ पोंपू पे उतरे हैं भैया परेशवा ओली प्रेसन से इस दूसरा के अनसिनलक डाल और बोले सितंबर में नोक्स प्राक वास वन एन फ्लिंक स्टेकिंग द डालन फॉल्ड द बरिक्टिंग फन एनालिस्टन फन एन मॉर्गन और बोले हैगा यहाँ पे होएगा जो मेरे उस टाइम में

conflict hè, ook waarom ze prijs chadair olie, olieleveranciers vanuit de Persische Golf na genoeg op de niveau zijn van de voor conflict in de Midden-Oosten. Waarom mee? Oh ja, wat hij wil, een van de Amerikaanse olie kost $90.39. Daarmee zijn olieprijzen gedaald tot maar onder de $100. 20% van de wereldwijde olieleveranciers. Door de blokkade staan honderden olietankers al maanden vast. Daar komt bij dat er veel schade is aan de olieorganisatie. Een organisatie en gasinstallatie. Bolle Midden-Oosten mee. Ik ga wakker doen. De Amerikaanse president Donald Trump. Ook een nieuwe voorstelcrisis voor staken vuren is afgewezen, mensen. हमारी जनता आपको हम समाचार बसुताते ही रहेंगे फॉल्स साल्डो फरक्लारिंग फॉर लीनिंग ब्रिंग अमतनार इन सेल भैया एगो अमतनार है सुरीनाम में भैया ओके पकड़ के सब बंद करी से वो फॉल्स है एन खस्क्रिफ्ट तक कर ले रहा एगो औरत है भाई अपन साल्डो ओवर फरक्लारिंग फॉर बैंक है बन खबर है उन बे अंदर बैंक पर्सनल के लीनिंग इन एसआरडी तक रहेगन फ्राउड करी से क्रॉस पॉलिसी नाम पकड़ के बंद करी से अपन साल्डो पे पॉजिटिव कर ले रहा और दूसरे बैंक पे गए रहा कर्जा निकारे फोकस पॉलिसी अंडरसुक हिट द फ्रॉ फॉल्स साल्डो फरक्लारिंग फॉर द बैंक इन खदीन बेर अंदर फाइनेंशियल इंस्टेलिंग ओम दारमी इन आनमेरकिंग को फॉर पर्सनलिकल लीडिंग एट अंडरसुक इज फर्दर नार फोर कोमन की फरदाख्त फॉर फॉल्स फरक्लारिंग सो हैवन गक्रीगन फॉर अन मान अन वी से हियर फॉर अ बेड्राग फॉर एसआरडी ही वताल अंडरसुक बाय द डायरेक्टर burgerzaken leveren echter opmerkelijke detail. तो पैसा निकारे खार भैया इस सब का ना कर डाले है फिया फ्रौद हुआ फ्रौद और कुछ कर ना पावे है हमारी जनता प्यारे प्यारे जनता जो आपको हम यहां से और आगे को सुनाते हैं लेकिन आप लोग के एक गीत हम सुनाएगी और वो है मुन्नी बदनाम बकेंडलीट

0: कभी कभी बदनाम हो जा भैया, मुन्नी बदनाम हो गए है। आप लोग को अभी बताए थे हम कि इंडिया में जो इंडिया के पिलोट थे दोस्तों, और उसको मोती ने तान किया है, जिसके नाम है स्मिथ माचंदर, और वो अब ठीक जा रहा है। उसका तंदुरुस्ती जोन है सिकन है, इसमें मोती ने उसको यानी कि उसको तार किया है, और तार करके पूछा है कि कैसे आपका अब जा रहा है और कैसे बातचीत हुआ है। तो आपका वो इंटरव्यू छोटा रूप में आपको हम यहाँ से सुनाते हैं, बस सुनते रहो।
1: तबीयत कैसी है
2: सर? सब ठीक है सर, सब ठीक है।
1: देखिए पूरा देश आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, महामृत्युंजय का जाप सब दूर जा रहे हैं।
2: उस मोमेंट में सर मैं अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था। मैं एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं गिर चुका था, मेरे को इतने गांव लग चुके थे कि मैं गिर चुका था नीचे। उस टाइम पे मैं बोला अगर मैं नहीं उठूंगा, मैं 17 साल से ज्यादा दौड़ा, मैं पिछले 11 साल से कैप्टन हूँ।

तो ये गesprek थे, यानी कि बातचीत हुए थे, यानी कि हमारा नरेंद्र मोदी ने तार करके वो पिलोट जो थे, यानी कि स्मित मच्छर जो सिकंदर हाइस में हैं, जो फ्लाई दुबई के कॉकपिट में जो को पिलोट थे, उसको यानी कि घायल कर दिया था, फ्लिक्ट एक मात्रा यानी कि नेस तोड़ करके बारे में आपको पता है, अभी उसके बारे में हम बताए थे दोस्तों। तो हम और आगे चलते हैं। हमारा सुरीनाम में भैया एगो बयार्द औरत है और बिचारी अपर फरियारी खा 20,000 पैसा एसर दे बैंकों से पेन करके लाई के घर में धल्ले रहा। एक आदमी आयल भाई बोले हम ABS के बाटी आईडी तोर मीटर चेक करे, बोले हम आईडी तोर स्ट्रोम के मीटर चेक करे और गए लेगो नहीं नसीब तक यार के औरत के बाद बतिया ले बातचीत हो रहा ईमेल बहुतर से स्त्रात में और ये शहर में है रास्ता तूफान हम जाने ला और जाए के घर में ही लंडवा के घुसेरी से और 20,000 पैसा ई बुढ़िया के नहीं नसीब तक यार के बुढ़िया के पैसा चुरा ले से मैया के। बोले दादा दी zich als een ABS-medewerker die de meter kwam opnemen. Het slachtoffer had het geld enkele dagen eerder van de bank opgenomen om deze maand haar 80ste verjaardag te vieren. Bichari re bichari. तो ये हो गया है बड़ा दुख के बात है। आपके घरे जो आइए मीटर हीटर चेक करे भैया, तब देख लियो पहले पास से बहिरवे पकड़ियो घर में तिलक के कोई के बलावे काम ना, वन मीटर बहिरे है घर में मीटर ना है ना बोलियो घर में। तो ये बात है दोस्तों, यहाँ से अपना समाचार को हम खत्म करते हैं। बताते शेल ब्रतुरर फ्रुको फर्ट्रैक और गयाना एसिड काउंसन इन सुरीनाम। शेल जो हैगा गयाना के जो तेल निकालो तरह फ्रुक फर्ट्रैक कर दे वहाँ चल गए हैं और देखे हैगा तेलवा जाए के गयाना से आप सुरीनाम में निकारे में। यहाँ बताए गए हैगा स्टाल ब्रुक ब्लॉक जो रहा फॉर द ग्रोथ ओली फॉल्सिन गयाना फॉर सावन फरली शेल हेड कभी op het verkeerde moment. Bolle Hega samen op 22 september tijdens de ROG Energieconferentie in Rio de Janeiro, Brazilië, reageerde op een opmerking van de Rijstaat Energie topman Jaron Rijstaat, die stelde dat Shell Guyana een beetje te vroeg had verlaten. Samen noemde die beoordeling nog een understatement. तो ये बात है, यानी कि आतोम पाई बदंग और फोर्सेटर फॉर द कॉम्फर्ट द कमिशी फॉर अंडरवेज। बोले फोर्सेटर स्काप हम जाएला कमिशी जो अंडरवे बोले हुआ कुछ होवे ना है। तो दोस्तों यहां तक था हमारा आदेश अविनेश की समाचार। जोनी नंबर वन है हमारा नाम सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। राम राम नमस्कार प्यार भी एदाम से सीकाल। हमारा प्रोग्राम हर मंगलवार के शाम को 6-7 बजे होता है, शुक्रवार के 6-7 बजे तक होता है और रविवार को दिन में 1-2 बजे तक हेराल होता है। बुधवार के भी सवेरे हम हेराल करते हैं। दुश्मन से आशिक मिस्ट है नमो खुली दहरानी खान लैस्त्र। हम जाते हैं रिक्लामे की ओर। रिक्लामे के बाद आप लोग तार करके एक गीत को भी मांग कर सकते हैं।

काली तेरी चोटी है और भैया क्या क्या और है वातन हॉट हॉट हॉट हॉट नंबर फन ऑर्केस्ट्रा टैप रीमिक्स सॉन्ग के बाद मुझे तुमसे है क्या है मोहब्बत है मोहब्बत।

मुझे तुमसे मोहब्बत है, मोहब्बत के बाद और क्या होता है दोस्तों। घड़ी को देखा जाए तो ट्विन तक मॉनिटर ओवर जीव जीव हो चुका है। शाम का प्रोग्राम है, 8 अक्टूबर हो चुका है और आपको हम सिर्फ रीमिक्स सॉन्ग ही सुनाएंगे। एक और हो जाए

Johnny nummer 1 style. En de dans.

और मुझे भी शराबी बना दिया हल्का हल्का, ये जो हल्का हल्का सूरत है मुझे शराबी के बांध में चल देते हैं दिलबर निर्बर।

और तुमसे बात करने का दिलबर और डांस नंबर फन अलका याग्नि के बाद में हम जा रहे हैं नोरा फती के और एक डांस नंबर है जो आपको हम सुनाते हैं ओनली बाय रेडियो फोन।

और चुरा के दिल मेरा, और क्या हुआ गोरिया की कहते है गोरिया चली। गोरिया के बाद में हम चलते हैं जरा हौले हौले।

और हल्ले हल्ले हल्ले मेरे जाजे ना हम तो और क्या है दोस्तों, तो तार किया है फिदा ने अपने जुनैद को अपने मोहब्बत का इकरार करते है टाइगर ऑफ इंडिया कुमार जानू अलका नायकनिक का मूवी के नाम है कसूर देखा जो तुमको, तो ख्याल आया जुनैद को फिदा ने बहुत प्यार करके तार करके इस गीत को मांग किया है। आओ सुना जाए फिदा क्या मांग किया है। क्या गीत है

ये दोस्तों मूवी के नाम थी शोले शोले एन शोले 1975 का सुपर हिट फिल्म थी। आज आप लोग को हम ओल्ड एंड गोल्ड रीमेक सॉन्ग

और क्या भी खूब लगते हो, खूब खूब लगते हो, और कौन कौन खूब लगते हो, खूब लगती हो। फिल्म का नाम है धर्मात्मा रेमिक्स। रेमिक्स सॉन्ग हम लेकर आते हैं हमारे यारो, बस सुनते रहो सुनते रहो। खनी तरफान वहां सामा खनी तो

और क्या क्या क्या क्या खूब लगते हो, और खाली खूब नहीं सुंदर भी लगते हो।

0: मूवी, मूवी का नाम है, मूवी के क्या नाम है अभी बताएंगे। जोंग का नाम है ये पर्दा और हटाकर अपनी मुखड़ा को दिखा दो ना।
1: पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा।

It is Johnny number one's time. And Johnny's Johnny Boy's time, mine. और दोस्तों आप जानते हैं आज नाचना जरूर

0: राह रहेरी, उसके बाद हम चलते हैं। क्या चलते हैं, कहां चलते हैं? रेडियो वाहन में चलते हैं कि मेरे महबूबुआ और कयामतुआ। और कैसे होगा, कैसे नहीं होगा?
1: Shakira on the beat
0: and beat।

0: तेरी गली
1: दिट इज ओग नी स्लेग मेन्सी। मार फना खवाली मार रीमिक्स रीमिक्स ए रीमिक्स पर दे।

और मेरी नसीब में तू है कि हम है। रमता जोगी, रमता जोगी, रमता जोगी।

रमदा योगी के बाद हम और कहां जाते हैं जब किसी से प्यार हो जाता है तो इकरार भी करना चाहिए।

प्यार प्यार हुआ है, इकरार भी हुआ है, और जब प्यार होता है तो डरना मत चाहिए, जो डर गया समझो मर गया। और प्यार से कभी कभी डरना मत, वैसे स्टेरिक तो बेंस और जब घाम हो गया, जब घाम निकल गया, धूप निकल गया, तो छैया छैया चलना चाहिए।

और छैया छैया चलना, यारे मौसम मौसम मौसम, चाहे श्रीनाम में चाहे यहाँ पर, घाम में मत चलना, धूप मत चलना, नहीं क्या होगा, छतरी लेकर चलना। और छैया छैया के बाद हम चलते हैं, अगर तुम्हारा दिल किसी पे आ गया और किसी ने जो आपको पुकारते हैं तो क्या करना चाहिए, हम बताते हैं क्या करना चाहिए।

यहां से पुकारते हैं कि आ जाना। और अगर आपको प्यार हुआ, दिलदार हुआ किसी परदेसिया से, तो ये गीत आपको जरूर सुनना चाहिए, चाहे आपकी परदेसिया यहां हो, दनहाग में, अमस्टरडम, इथरे, ग्रोनिंगन, पारामारिबो, सरमक्का, निकेरी, जहां भी हो अपने परदेसिया को याद करना, जरूर करना। दिस इज जॉनी नंबर 1।

परदेसिया परदेसिया इन परदेसिया एन मेंसे नाद परदेसिया अब क्या होगा दैट इज अनफर।

और अनीसी अनीसी अनीसी और उसकी तो आए बाहर और जाने से क्या होगा रे बिग सॉन्ग ओह नहीं चिमन से और होते हो पे जब कभी किसी को चूम नहीं लेना किसी बात करना होठों से तो क्या होता है।

और ओठों पे ऐसी बात और ओ बात क्या है दबा के चली आई। और उसके बाद हम चलते हैं या उसके बाद हम चलते हैं और ओ मेरी महबूबा।

कुछ पुराने कुछ नए गीतों से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे। हमारे यारों, हमारे दोस्तों, हम चलते हैं अगला गीत की ओर। हम हमसे मोहब्बत करके कुमार शानू साधना सरगम का ये गीत है।

और दोस्तों हम उनसे मोहब्बत करके और मोहब्बत करके अगर मोहब्बत हो जाते हैं तो क्या होते हैं हमारे यारो, क्या होता है? उसके बाद हम और एक गीत के ओर बढ़ते हैं, वो है तेरी याद दिल से और भुला ना पाए। फिल्म का नाम है हरियाली और रास्ता 1966 का, जिसमें मनोज कुमार, माला सिन्हा, हेलेन ने काम किए हैं।

और तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ, जब किसी से नफरत हो जाते हैं, झगड़ा हो जाते हैं तो लोग उसके याद भुलाना चाहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और वो होगा मत कर इतना गुरूर, जो कभी कभी लोग कितने गुरूर करते हैं हमारे दोस्तों अलका याग्निक पंकज उदास की ओर हम चलते हैं। और आओ मिल्क सुना जाए, मूवी का नाम है आदमी खेलो।

दोस्तों मत कर इतना गुरूर। फिल्म के नाम है झनकार अलका यांगनी, पंकज उदास का गाया हुआ सॉन्ग है। इस फिल्म में रीना रॉय और गोविंदा ने काम किए हैं हमारे यारो। उसके बाद हम अगला गीत की ओर बढ़ते हैं। कुछ नए और कुछ पुराने गीतों के बहान प्रोग्राम हमारे चलेंगे। तस्वीर तेरी दिल में, तस्वीर कब लोग दिल में उतारते हैं, ये किसी से बेहद बहुत बेहद दिल से और उससे प्यार करते हैं। नैतिक गिल्लासा जी परमाश्री मोहम्मद रफी का सुपर हिट सॉन्ग देवानंद मालधान सिन्हा का ये सॉन्ग है। आप सुनते रहो।

और तस्वीर तो तेरे दिल में आती ही रहेंगी। और नैतिक लता जी परमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ सुपर हिट सॉन्ग है दोस्तों। तो प्यार भरी गीतों की बहान प्रोग्राम हमारा।

की रूठ आई। और उसके बाद हम चलते हैं अगला गीत की ओर। और अगला गीत क्या है हमारे यारों, आज हम कुछ लवली सॉन्ग के मूड में हैं। और लवली सॉन्ग कब होता है, जब प्यार बढ़ जाता है। तो हम चलते अनुराधा पौडवाल उदित नारायण की ओर। अब भी या महिया, अब देखो भैया क्या है।

और आपकी आ जाने से कभी कभी बहार हो जाता है और बहार के बाद में कभी कभी मार भी हो जाता है। ये तो प्यार में चलते हैं हमारे यारो, हमारे सुनने वालों, उसके बाद तो हम चलते हैं और हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते हैं, और हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते हैं। आओ मिलकर सुना जाए।

अहोंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतों के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

तो आज हम आप लोग को दो टॉप सिंगर्स का प्रोग्राम हम सुनाएंगे और वो है यानी कि द टॉप सिंगर्स फ्रॉम इंडिया द टाइगर ऑफ द इंडिया कुमार शानू का गीत और एक बगल है अलका याग्निक का गीत। तो इस कुमार शानू के साथ अलका याग्निक के गीत हम चलाएंगे और फिर से उसके बाद हम चलाएंगे और वो है मोहम्मद अजीज का लवली हिट सॉन्ग हम आप लोग को सुनाएंगे। तो पहले हम चलते हैं मोहम्मद

और दोस्तों, जैसे हमने आपको कहा है कि आज हम आप कुछ सॉन्ग सुनाएंगे, मोहम्मद अजीज का सॉन्ग और एक बगल उसके बाद, और वो है टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू और अलका यांगनिक का सॉन्ग हम आपको सुनाएंगे।

और कोई तलाश है जिंदगी तो कोई साथी चाहिए। अब हम चलते हैं कुमार शानू के बांट में एक बार फिर मोहम्मद अजीज की ओर।

तो मोहम्मद अजीज ने कहा कि ये गम ना होता तो वो शराब कभी नहीं पीता। तो उसके बाद हम चलते हैं टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू एंड अलका याग्निक।

और दोस्तों अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज का ये सॉन्ग थे। उसके बाद हम चलते हैं एक बार और आका यागनी कुमार शानू के उरे और हमारे यारो तो हम चलते हैं एवरी ग्रीन कुमार जानू एंड अलका यागनी।

और बरसात में भी आग लग जाती है दोस्तों, तो ये सब तो प्यार की बातें होती है यार। तख्त में जो सदाबहार सॉन्ग है और वो है कुमार शानू अलका यागनी का एक गीत, आपको हम सुनाते हैं। और दिलबर के बाद में हम क्या आते हैं,

शुद्ध हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतों निकलिए तार कीजिए 9735 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

यहाँ से हमारा आज का प्रोग्राम जो है कुछ मन्ना दी और किशोर जी का गीत हम आप लोग को सुनाएंगे कि कहते हैं मानता है नहीं कमबख्त दिल उसी चाहने से, मानता ही नहीं कमबख्त दिल मान

ता ही नहीं कमबख दिल उसे चाहने से मैं हाथ जोड़ता हूँ तो ये गले पड़ जाती है। हमारे यारो तो हम चलते हैं परमाश्री मनादेई की ओर और चुनरी में दाग कब लगते हैं जब अगर आप कुछ करते हैं तो लगते हैं ना।

தான் நதிர்தான் தான் நதிர்தான்

और हमारे यारो लगा चुनरी में, और चुनरी में दाग कब लगते हैं आपको तो पता होना चाहिए, और दिल ही तो है। राज कपूर मनादी, और इसमें मनादी का फिल्म के नाम है दिल है तो है, निखत द्रिय सस्ता का ये फिल्म है। तो दोस्तों हम और आगे को चलते हैं, और मनादी के बांध पे हम चलते हैं किशोर दादा के ओर, और कहते हैं ना पूछ दिल के हकीकत मगर ये कहता है, ना पूछ दिल के हकीकत मगर ये कहता है, वो भी बेकरार रहे जिसने बेकरार किया है। तो हम चलते हैं, मूवी का नाम है अंदाज, 1971 का ये फिल्म है जिसमें माला सिन्हा राजेश खन्ना ने काम किया है, और किशोर दादा का ये सॉन्ग है।

और जिंदगी एक सफर है, और जिंदगी एक सफर क्यों होता है दोस्तों, जब सुहाना होता है। मूवी का नाम है अंदाज 1971 का ये, और ये फिल्म है। तो हम और आगे को चलते हैं हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों। तो और क्या है, जैसे कहा है किशोर के बाद में हम चलते हैं और परमाश्री मनाडेई के ओर की कहते हैं, इस दिल की दास्तां भी बड़ी अजीब होती है, इस दिल के दास्तां भी बड़ी अजीब होती है, बड़ी मुश्किल से इसे खुश नसीब होती है, किसी के पास आने पर खुशी हो न हो, पर दूर जाने पर बड़ी तकलीफ होती है। तो हम जाते हैं कि अगर हमारे गीतों में हमारे टूटिया हो तो हमें क्षमा करना दोस्तों, लेकिन हम जाते हैं प्यार करने वाले को लिए कि जोहरा क्या कहते हैं।

0: खान साहब या तुम भी तकल्लुफ करने लगे, बड़े अफसोस की बात।
1: खाना वाना तो होता ही रहेगा, महफिल कब गर्म होगा?
2: महफिल भी जमेगी, तसल्ली रखो।
0: दादाजी आज तो आपको गाना सुनाना पड़ेगा।
2: यार अब बुढ़े हो गए, गाना वाना पुरानी बात।
1: और तुम बुढ़ा हो गया, हम तो नहीं हुआ। सुनाओ, नखरे बात करो। ओ भाभी जान।
3: जी भैया।
1: हो तुम्हारा शोहर बुढ़ा हो गया था, हम इसको जवान करता है।
0: अच्छा, लक्ष्मी सामने है तो मैं जवानों का जवान। लो सुनो।

और मेरी जोहरा जबी फिल्म वक्त का ये गीत है। तो कहते हैं अब जिसके ये मैं आई वो ही पाई रोशनी, अब जिसके ये मैं आई वो ही पाई रोशनी, हमने तो दिल जला कर सारे आम रख दिया है। तो हम चलते हैं रात कली में क्या आते हैं दोस्तों, जो सपने आते हैं तो क्या आते हैं, रात कली में किशोर दादा ने आते हैं।

रात कली और ख्वाब आई, उसके बाद हम चलते हैं मनदई की ओर।

मुश्किल सी ये दिल मेरा दिल नी ठड़प की। और किशोर दाना ने इस गीत को सुनाए हैं तो कहते हैं बड़ी मुश्किल से इसी खुशी नसीब होती है, बड़ी मुश्किल से इसे खुशी नसीब होती है। किसी के पास आने पर खुशी हो न हो, पर दूर जाने पर बड़ी तकलीफ होती है। तो हम चलते हैं अगला जोंग की ओर। हमारी दोस्तों लता जी, नैतिकी लता जी और परमाश श्री दादा हेमंत दादा मन्ना दे का ये सॉन्ग आपको सुनना चाहिए।

और दोस्तों आपको पता चले और मना डे के बाद हम चलते हैं अपना प्रोग्राम को लेकर आगे। कहते हैं अब जिसके ये मैं आई वही पाई रोशनी, जिसके लिए मैं आई वही पाई रोशनी, हमने तो दिल जला कर सारे आम रख दिया है। तो हम चलते हैं किशोर दादा के ओर, एक प्यार भरी सॉन्ग आपको हम यहाँ से सुनाते हैं।

और दोस्तों इसके बाद हम जाते हैं अपना प्रोग्राम को लेकर आगे, और यहाँ पे मनाली क्या कहते हैं।

तुमने अपनी आवाज वाले को पास तुम्हारे खोए हुए स्वर्ग में वापस मिल गए। हाँ, आज देवी माँ से कुछ और भी मांग लेती। गाओ गोपाल गाओ, इस नौजीवन की बसंत।

वाले का ये। और आम लोग जानते हैं हमारे यारो पुराने गीते की मजा कुछ और है। हम चलते हैं परमात श्री मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में।

और दोस्तों, प्यार में तो कभी कभी छोटी बात से बड़ी बात हो जाती है, आपको तो मालूम है। और कभी कभी प्यार में लोग भूल जाते हैं कि कौन से बात वो करते हैं, कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। तो ये सब बात है हमारे यारो। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर, वो है ओ साथी रे।

0: जीना है और रेडियो फाहुन के बिना कैसे रात कटेगी। तो हम चलते हैं एक रोमांटिक सॉन्ग किशोर जी के आवाज में।
1: हाँ
2: या चुप रहूं
1: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है
1: क्या है?

और दिल की टुकड़ी टुकड़ी करके और मुस्कुरा के चले गई। उसके बाद पे हम एक और गीत को सुनाते हैं।

0: हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा आम
1: अरे जाम। तो ये बात है दोस्तों।
2: हाँ, अगला गीत मैं चलाने वाला हूँ, तो ये है इस तरह से मैथिली मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी के साथ रोटी कपड़ा मकान नेगन तीन फिर से इवन तक का ये गीत आपकी जानी पहचानी गीत है।

मैं ना भूलूंगी लता जी और मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ अ मिलियंस रोटी कपड़ा मकान में से आपको सुनाए हमने ओवर फाउन हिंदुस्तानी और रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं और आपका हृदय से स्वागत करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुना रहे हैं। क्या ख्याल है, इस तरह से आ रहा है।

शंकर जय किशन के साज पर मैथी मुकेश करोड़ों के दिल पर राज करने वाला आपको सुना है निकति एन सैफ का एक गीत 1971 का और फिल्म नादान में से चला। चलिए अगला नंबर हम चलाने वाले हैं, क्या ख्याल है, ये लंबा चौड़ा गीत सुनिए रफ़ी साहब की आवाज़ में।

फिल्म अली बाबा एंड द 40 थीव्स यानी अली बाबा और 40 चोर। इसकी कहानी बहुत अच्छी है, गीत सुनिए।

0: देख लीजिए, अब कोई नहीं कह सकता कि सर धड़ से अलग था।
1: शाबाश, ये लीजिए आपका इनाम।
0: शुक्रिया शुक्रिया।
1: मुस्तफा बाबा, जरा आंखों पर पट्टी बंधवा लीजिए ना।
0: बांधिए बांधिए।
1: कल रात को मैं फिर आपके घर आऊंगी।
0: किसी और की गर्दन काटने का इरादा है क्या?
1: नहीं नहीं, सिर्फ आपसे मिलने।
0: जरूर आइए जरूर आइए।
1: चलिए
0: चलिए चलिए।

हम तेरे चिराग है, जलाए जा बुझाए जा, तवारीख गवाह है, यानी खस्की दिन इतिहास गवाह है, अली बाबा एंड द 43 में ये गीत हमने निकाले हैं। और ये असली कहानी है, सही कहानी है, क्योंकि कितने किताबों में आया है, कितने पुस्तकों में इसका जिक्र हुआ है। उषा खन्ना के साज पर नेक दिन ससन सस्त का ये फिल्म हम आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है इस तरह से। जी हाँ।

लता जी और हेमंत कुमार जी, ये दोनों मिल के ये शानदार डुएट आपको सुनाए हैं ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी सुन रहे हैं और आपके धन्यवाद। एक दो लोग जो ऐप किए कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन वो अपना नाम नहीं बताना चाहता है। बहरहाल वे लोग जान गए हैं, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, रफ़ी साहब का ये गीत सुनिए। ये गीत है फिल्म बेरहम का, जी हाँ, बहुत प्यारा गीत है। नेगेटिव तख्त का ये फिल्म है और बहुत प्यारा गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर रफ़ी साहब की आवाज़ में। ये गीत में बहुत सा ज्ञान भरा हुआ, इसे ध्यान से सुनिए, अगर समय मिले तो सुनिए अवश्य, और अगर आज बिजी हो गए तो काम करते रहिए, लेकिन ये गीत सुनिए, इनकी शब्दों पर ध्यान दीजिए।

पेशानी पे जो लिखा है वो पेश आएगा, मालिक ने जो लिख दिया है वो बदल ना पाएगा। पता है सही है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी गाया गया है कि भागवत भगवान की आरती पापियों के पाप से है तारती, लेकिन पता नहीं। बहरहाल यह गीत हम आपको सुनाएं, निखती तख्त का ये गीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। हमने कहा इन गीत इसलिए कहा कि वर्मा मालिक के लिखे हुए गीत हम आपको सुनाएं कि कितने प्यारे शब्द है इस गीत में। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। कहानी किस्मत की टाइटल सॉन्ग।

कहानी किस्मत की मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाइए ये शानदार गीत ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, देखते हैं महेंद्र कपूर, महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

महेंद्र कपूर जी और हेमंत कुमार जी की आवाज़ में ओपी नैयर के साथ पर फिल्म संबंध में से निकाल कर ये गीत हम आपको सुनाए ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए एक ही गीत और हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे कार्यक्रम लेकर बढ़ेंगे। ये गीत इस तरह से है।

हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, ये शानदार गीत चला लता जी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हमने पेश की www.pinfaunfm.nl पर। आप चुने जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। या शाम के कार्यक्रम में तो लीजिए हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

आई लव यू, ये शानदार द्वेत हमने पेश की ओवर फॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं ओम मैं चला रहा हूँ, इस तरह से हमने पेश की ये गीत। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से आ रहा है।

देखो बिना सावन बरस रही बदली, और ये शानदार गीत हमने पेश की रफ़ी साहब की आवाज़ में निकती निघ्न फैफ तक का ये गीत हंसराज बहल के साज पर।

ये भी रफी साहेब आशा जी कारवा में से निकाल कर हम आपको सुनाए हैं। कार्यक्रम आप पेश है तो लीजिए इस तरह से।

मुझे छू रही है तेरी गर्म सांसें, ये शानदार गीत हम आपको तो सुनाए हैं फिल्म स्वयंवर में से निकाल कर हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से आ रहा है। आशा जी है फिल्म हमसाया ओपी नैयर के साथ।

अच्छा जी, आपको सुनाए ओपी नायर के साज पर फिल्म हम साया में से निकाले हैं ये शानदार गीत। चलिए, ये गीत बहुत दिन हुए शायद आप भी नहीं सुने होंगे, एक दूजे के लिए।